0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-36-36-879 and 0312-24-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: नवा सूबा ठाहिण ख़िलाफ़ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी हिकु आवाज़ बणिजी विया। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी पीपल्स पार्टीअ जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ सां लंडन में मुलाक़ात। आईनी तरमीम समेत अहम सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। ज़रियनि मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि नवनि सूबनि जे क़याम जी मुख़ालफ़त ते हिक ॿिए सां गॾियल सहकार जी ख़ातिरी कराई। मुलाक़ात दौरान हिकु भेरो ॿीहर नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे इतिहाद खे मज़बूत रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। पाकिस्तान कश्मीर बाबति भारती बयान खे रद्द करे छॾियो। परे आफ़ीस मूजिबि हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम जम्मू कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघूं। ही मामिलो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे एजेंडा जो हिसो आहे। भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ ॾियण जो वाइदो पूरा करे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारनि जंगनि में पाक फिज़ाया जे शाहीन नाला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो फिज़ाया जे ॾियारे ते पैगाम। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फिज़ाया जे शाहीननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मंझराई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। थरपारकर जे सूफ़ी बुज़ुर्ग हरदास भगत जो गादी नशीन भगत माथूराम ध्यांत करे वियो। सोग में शहर जे समूरनि बाज़ारनि समेत कारोबार मर्कज़ बंदि रहियो। माथूराम जूं आख़िरी रस्मूं अॼु ई अदा कयूं वेंदियूं। हिंगोर जा भरिसां क़ौमी शाहरा ते ऑयल टैंकर जो कार खे टकर ॿ ॼणा फौत। हादसे में जावेद अली शाह समेत ॿ ॼणा फौत। लाश अस्पताल मुंतकिल। भिरिया रोड में कराची खां लाहौर वींदड़ तेज़गाम एक्सप्रेस जे टकर में नौजवान फौत। फौती नौजवान जी सुञाणप भिरिया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक थी। लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: ठम ठम ठम किताबे लेके निकले हम अमीन कहाना रुकना तुम।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो।
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252576।
7: जी हा 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द करे छो आलमी बिरादरी का नोटिस जो मुतालबो पर डेई ऑफिस मूजिब एक तरफ का तकरारी कदम जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सगन ई मामलो गडियल कौमन की सलामती काउंसिल की एजेंडा जो हिस्सो आहे भारत कश्मीरी अवाम के हक डेण जा वायदा पूरा करे। नवा सूबा ठाण खिलाफ नून लीग ए पीपल्स पार्टी का आवाज बणजी वया पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से लंडन में मुलाकात आइनी तरमीमन समेत अहम सियासी मामलों से गाल बोल जरियन मूजिब बिन्हीं अगवाणन नवन सूबन के क्याम की मुखालफत से एक बे से गडियल सहकार की खातरी कराई मुलाकात दौरान एक भेरो बीहर नून लीग ए पीपल्स पार्टी के इतिहाद के मजबूत रखने इतफाक किया।

सेप्टेम्बर ऐं मई वारनि जंगनि में पाक फिज़ाया जे शाहिनन आला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो फिज़ाया जे ॾियारे ते पैगाम। सदर आसिफ़ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केॾो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फिज़ाया जे शाहिनन पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मञराई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी।

0: थी वयो। अमारती तेल जे अघ में घटताई $103 जी थी वयो। मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन आॾो। मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त पेश। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त खां सवाल कयो, तव्हां खे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो? जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मङेंदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी। उमेर बाब चांडे जो चवण आहे त मरसू सिंध ॾेसू जा नारा हणंदड़ी सिंध जे वसीलनि वहदत जी सौदेबाज़ीअ में मुलविस आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि जा नारा, तकरीरूं ऐं सिंध दोस्तीअ जूं दावाऊं अवाम खां सियासी हिमायत हासिल करण खां सवाइ ॿी का बि हैसियत नथियूं रखनि।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद के नए मॉडल की मंजूरी आईनी तरमीम असेंबली में सादी अक्सरियत से वरती वी। सेहत तालीम माहौलियात शहरी सहूलतू मकामी हुकूमत की जिम्मेवारी होंद। कानून अमन ए मास्टर प्लान जहा शोबा वफाक पैंजे ही हथ में रखन्द। सीडीटीए समेत मुख्तलिफ इदारन जा इख्तियार भी नए सर तय कया वेंदा। अमन अमान ए मास्टर प्लानिंग वफाक पैंजे घरू वजारत वसीले कंट्रोल कंद। इंतजामी मामला संभालण चीफ सेक्रेटरी ए चार सेक्रेटरी मुकर्र करण की सिफारिश कई वही। जरियन मूजिब इस्लामाबाद के नए ढांचे की मंजूरी वफाकी काबीना डींदी जै बाद उन मंजूरी कौमी असेंबली ए सेनेट का वरती वी। इस्लामाबाद के इंतजामी मॉडल बनाने की तैयारी मुकम्मल की चुकी है। कमेटी में लंडन वाशिंगटन ए दिल्ली के मॉडल से बहस कयो वयो। वफाक वजीर तारिक फजल चौधरी ड्राफ्ट सभी पार्टियों से शेयर कयो वेंदो। इतफाक राय का बो मरलो शुरू थी तो इंतजामी यूनिट कि रेफरेंडम जो बो नालो आवाम की राय है। पीटीआई पारा सूबन के विरांगे की मुखालफत। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो है तो 73 आइन खिलाफ वनी सूबन के विरांगे की हिमायत न कंदासी। आइन वाजे है तो सूबे के विरांगे लाए इन सूबे की असेंबली मंजूरी दींदी। नवा सूबा ठाण खिलाफ नून लीग ए पीपल्स पार्टी एक आवाज बनजी वया। पंजाब के वजीर आला मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से लंडन में मुलाकात। आइनी तरमीम समेत अहम सियासी मामलों से गाल बोल। जरियन मूजिब बिन्हीं अगवाणन नवन सूबन के कयाम की मुखालफत एक बे से गल सहकार की खातरी कराई। मुलाकात दौरान एक भेरों बीहर नून लीग ए पीपल्स पार्टी के इतिहाद के मजबूत रखने इतफाक किया।

0: पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द करे छो आलमी वर्दी खान नोटिस जो मुतालबो परदेही ऑफिस मूजिब एक तरफ खान तकरारी कदम जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सघन ही मामलो गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के एजेंडा जो हिस्सो आ भारत कश्मीरी अवाम के हक डण जा वायदा पूरा करे सितंबर ए मई वारे जंगिन में पाक फिजाए के शाहीन आला किरदार अदा कयो वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सदर आसिफ अली जरदारी जो फिजाए के दिहाड़े ते पैगाम सदर आसिफ अली जरदारी चयो आए त हक वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केडो भी ताकतवर हुजे असां जे अज़म के शिकस्त नथो ॾेई सघे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त पाक फिजाए के शाहीन पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मंझराई आहे सितंबर ए मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी आलमी मार्केट में तेल के अघन में वाद ब्रेंट क्रूड फी बैरल $96 ए अमेरिकी तेल फी बैरल $91 जो थी वयो अमारती तेल के अघ में घटताई $103 जी थी वई मीर रज़ा केस बाबत अदालती कमीशन आॾो मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त पेश कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त हसीम खां सवाल कयो तव्हां खे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो आहे हसीम जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मङेंदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
8: जी हा, 3135525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। जब नदल तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआओं की समंद दिल जादू की बारिश तो लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागते जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जी हाँ जनाब, प्रोग्राम खैर कोई नया सा प्रोग्राम नहीं है भाई, आप लोग जानते हैं जबकि आप लोगों को पता है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जनाब आप लोगों को मजीद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस प्रोग्राम में मालूम पड़ने वाली है, चाहे अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं या फिर नहीं रखते, क्योंकि नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा करने की बहुत ज्यादा काम आएंगे। वैसे भी कहते हैं कि खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ही एक अच्छी सी बात होती है, तो खूबसूरती का ख्याल रखना किस तरह से होता है, किस तरह खूबसूरती की जो ना वो केयर की जाती है और खूबसूरती को हमेशा के लिए किस तरह जो है ना वो महफूज किया जा सकता है, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ढेरों ढेर बातें होने वाली हैं। तो रेडी शेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए और हमारे साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करने के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरती की दुनिया में आपको कहा जाता है वेलकम इन, खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और जरा बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे थे? बिल्कुल जी, उम्मीदन शदीदन के ठीक ठाक होंगे और सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ होगा जी प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हम यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। और आप यकीन माने कि इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ हम कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं ये तो भाई आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं तो प्रोग्राम में आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, सॉन्ग्स होंगे और आप लोगों से पूछे जाएंगे सवाल, आप लोगों के लिए सेगमेंट्स होंगे प्रोग्राम में और आप लोगों के लिए बहुत सारी खूबसूरती की बातें भी होने वाली है। ओके जी, तो कुल मिलाकर रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ देने के लिए और फुल ऑन एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 और के सवाले गाने काम करती भैया सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 और की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ, बहुत प्यारी सी नाद हम प्रोग्राम के ना स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से किस तरह की और कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी और कौन से प्रोडक्ट क्यों आप इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरह आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने का काम करने वाले हैं। ओके जी, सो रेडी शेडी हो जाइए और आइए सुनते हैं ये एक प्यारी सी नाज, सो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

शुक्रिया जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नाच चुके हम सब ने सुनी और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोग्राम है। जनाब हम मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली खूबसूरती के हिसाब से बातें की जाएंगी, लेकिन देखा जाए तो जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जो लोग प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो उनको तरीकेकार बताने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को आज के प्रोग्राम का टॉपिक बता दिया जाए तो ये उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा आज से आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताने वाले हैं कि वैसे तो इस प्रोग्राम में खूबसूरती की बातें होंगी, तो आज मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि आप लोगों से पूछें कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत अलग अलग तरीकेकार होते हैं, अलग अलग सी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि वो ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन क्या पता उनको खूबसूरती मिले या ना मिले। लेकिन आप जरा मुझे ये बताएं कि आपको आप ना अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, क्योंकि खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ज्यादा एक मुश्किल सा काम लगता है कुछ लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ओके जी, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में बात होगी तो वो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर आज के प्रोग्राम में बात होने वाली। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, इनके बारे में बातें होंगी। लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होने वाले, तो अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपने नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को बता पाए जनाब कि आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी ज्यादा जरूरी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने ज्यादा वाले फायदे हैं जो कि आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, डी स्किन फेस वॉश हो, इनके बारे में बातें ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये चीज तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या प्रोडक्ट है, कैसे लगाना है, क्यों इसके फायदे हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आप लोगों को बताते चले। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यानी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल एड ये जाते हैं, या फिर आपको बताया जाता है कि फलां प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप जल्दी में गोरे हो जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट लगाएं ये जल्दी में गोरा कर देता है। तो जो जल्दी में गोरा करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर हेवी से केमिकल डाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जब बात आती है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात यह है जनाब कि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है, फुल जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है, और जो है ना इसकी जो मेकिंग है, इसका जो प्रोसेस है वो इतना जबरदस्त रखा गया है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने सारे हमें लोग सुन रहे हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, ऑयली स्किन है, ड्राई है, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के तरीकेकार क्या होने वाले हैं, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या फिर आप डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते ना कहते हैं हम क्रीम नहीं लगा पाते, चले कोई बात नहीं, आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसके बारे में तो क्या ही बात बताऊं, यानी कि डी स्किन का जो फेस वॉश तैयार किया गया है तो वो इतना प्रीमियम क्वालिटी का, इसका जो है ना वो थीम रखा गया है या इसकी जो क्वालिटी रखी गई है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी की है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप नाम लेकर तलब करने वाले हैं। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं, वहां से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं आपको मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको नंबर्स भी बताए जाएंगे और नंबर्स जो बताए जाएंगे उनके ऊपर आपको रابطہ करना पड़ेगा और رابطہ करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो नंबर से जनाब नोट कीजिएगा, बिल्कुल जी, पहला नंबर है 03 12 50 25
9907 और दूसरा नंबर है 0332738439 09। अच्छा, ये नंबर से जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सकते हैं, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं मिल रहे, और जल्दी से हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताएं आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं। ओके, तो बिल्कुल आपके कॉमेंट्स हैं जिनकी जानब हम आएंगे, आपके साथ गुफ्तगू होगी, बातें होंगी, चिट चैट होंगी, मजे करेंगे। अच्छा, तो कॉमेंट्स वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जना, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। ऐसे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ चुका है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अब चल रहा है। ओके जी, सो प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं बरकत रमादानी जमाली बलोच, हमें सुन रहे हैं जी बलोचिस्तान से, आपको वेलकम कहा जाता है। रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अखलाक बलोच हमारे साथ है, अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, आपका इंतजार कर रहे थे जाय बुधा। और सलीम गोपांग हमारे साथ कहते हैं नूर हुसैन जमाली, गंदा खान बलोच से बेहतरीन प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूजर आ चुके हैं महफिल में और आपको वेलकम कहा जाता है। और हाफिज मोहम्मद बाबर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और राजा रमीज हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्रा मुस्कान है। और उसके अलावा फरवा गुल हमारे साथ ही, कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके अच्छे नसीब करे, आमीन जी सुमा आमीन। और नजीर कोसम सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान को वेलकम कहा जाता है। और भाईजान लिखते हैं कि अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह के काम से प्यार करते हैं, और खालिक की इज्जत करने वाले, खालिक का अदब करने वाले, खालिक के अमल का एहतराम करते हैं, और खालिक का अमल मखलूक को पैदा फरमाना है। अच्छा जी, ओके ओके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ हम ये बहुत ही प्यारा सा गाना भी सुनेंगे, आप बोलेंगे कि भाई सिर्फ सदराबाद ही करती जा रही हैं, तो गाने भी सुनेंगे और आपको बताएंगे। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, वैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं कौन सा प्रोडक्ट लगाया, कब लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और रिजल्ट कैसे पा चुके हैं।

मोहम्मद राशिद अवान हमें सुन रहे थे। सलाम सिस्टर सिद्रा, काफी दिनों के बाद आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको सलाम जी, वाले को बस सलाम कहते हैं। जीशान अली बोजारा में सुन रहे हैं, वालेकुम असलम। फरवा कुलकती सिस्टर आप कैसी हैं? जो आपका नाइस है, गुड वॉइस, ओके थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो भाई, गोट रईस गुल हसन खोसो से वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम असलम कहते हैं। शो तमाम जबरदस्त है, थैंक यू तमाम भाई जो मोहब्बत हुआ है। अखलाक भाई कहते हैं कि आंसर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के हम अपने हुस्न की केयर करते हैं। क्या बात है। वैसे मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, यानी कि खूबसूरत होना, खूबसूरत रहना हर किसी को पसंद आता है। कोई एक ऐसा इंसान ही होगा जिसको खूबसूरत दिखना अच्छा नहीं लगता होगा। हर किसी को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। खूबसूरती का ख्याल रखना ये बहुत ही एक अच्छी सी आदत होती है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है। और उसके अलावा कासिम खान हमें सुन रहे हैं, सरदार कासिम खान मीरानी, ओके शाह जमाल से हमारे साथ है मेरे ख्याल में। आपको वेलकम कहते हैं भाई जान। और चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं चाचा, तबीयत कैसी है आपकी?

0: जरा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को बताइए, सबको बताइए। जनाब यहाँ पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है। डे स्किन ब्यूटी क्रीम जब आ चुकी है तो अच्छा आ चुकी है। यहाँ पर इरम भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम। और टाइम भी हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप जरा हमारा इंतजार कीजिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे जी 1:40 पर। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं Whitish and D-Skin Beauty Show, sponsored by Whitish Beauty Products and D-Skin Beauty Products. इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर बिगर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं DFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को क्यों ना बताएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इतनी अच्छी और इतने खूबसूरत तरीके से आप लोगों को खूबसूरत बना देंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि आए हाय चस्सी करा दी। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एक क्रीम है, ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई क्रीम है। अगर आप भी कोई ऐसा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सेफ हो, आपकी खूबसूरती को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ आ सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए। वैसे भी आप लोगों को इस चीज के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से थोड़ा आपने अवॉइड करना होता है। वैसे भी जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट भरा पड़ा है भाई ऐसे प्रोडक्ट से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, जो कि आप लोगों के स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि हाँ भाई हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देंगे, आपकी खूबसूरती ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, लेकिन जब आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो आपकी जो खूबसूरती है ना, वो तो कहीं गायब हो जाती है, लेकिन उल्टा आपके चेहरे पर जो है ना, वो बहुत ज्यादा इस तरह के निशानात आ जाते हैं जिनका होना आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होता है। आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब सी हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो खराब हो चुकी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे और आपके पास कुछ अच्छे वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मेकिंग की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन मिल रहा है और जनाब ये जनाब विटामिन ई बीट से भी तैयार की गई है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो कि आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर मिलने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना इतनी खूबसूरती मिलती है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं, आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, आपको खूबसूरती मिलना स्टार्ट होगी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको रिजल्ट दे रही है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है भाई जान, बिल्कुल जी, अगर आप 2 रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिल रही है खूबसूरती वो भी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो खूबसूरत होते रहेंगे जैसे और सारे प्रोडक्ट आपके साथ कर रहे होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो आपको खूबसूरती मिलती है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपकी खूबसूरती भी कहीं आपसे रूठ ही जाती है। ऐसा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद होगा जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से होगा। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि भाई हम कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं, हमारे एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि आप हमें अभी अभी सुनाए स्टार्ट कर चुके हैं, आपको नहीं मालूम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप ऐसा कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए, आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप परचेज कीजिए। अगर नहीं आपको मिल रहे, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे एरिया में नहीं मिलते, हमारे सिटी में नहीं मिलते, तो आपको मैं नंबर बता रही हूँ, उस नंबर के ऊपर आप रابطہ कीजिएगा। नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप رابطہ करते हैं तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम वहां मिल जाएगी। वैसे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालकात में भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अभी अभी बनी है, नया नया प्रोडक्ट है, ये भाई इतनी जबरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट है और इतनी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है, और उसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। आप इस्तेमाल करें और बाहर के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी देखा गोरे कितने गोरे होते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो भाईजान डायल कीजिए 03-12-50-25-907। अगर ये नंबर बंद हो, नहीं रिसीव हो, तो आपके पास दूसरा नंबर भी है जो है 03-32-73-84-309
8287384309. ये बिल्कुल दोनों नंबर हैं जो कि आप डायल कर सकते हैं. एक बंद होगा, एक नहीं उठाएगा, तो आप दूसरे के ऊपर ट्राई कीजिए. अगर दूसरा ना उठाए, दूसरा अगर बंद हो, तो आपको जो पहला बताया उसके ऊपर रब्ता कीजिए. एक ना एक तो खुला ही होगा, एक ही ना एक जो है ना उसके ऊपर आपको जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा. आपको बताया जाएगा कि

पोस्ट को लाइक और शेयर कर रही है, यहाँ पर आपके कमेंट्स हैं और क्या क्या कह रही हैं आप, बिल्कुल जी आपकी कमेंट्स की जाने बातें। और उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। हाँ जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, और खूबसूरती के मामले में हमेशा कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।

लेकिन ब्यूटी क्रीम लगाई या फिर नहीं? ऐसे नहीं छोड़ेंगे लगा के छोड़ेंगे. अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी फजीला. फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान. कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत. आप बताएं आप कैसी हैं. कहती है सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को. और फिर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ गई. हां जी देखें ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का. और जी हमारे साथ ही हमारी दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी आ गई आप. माशाल्लाह माशाल्लाह. हां जी आइए, आप ही का इंतजार था. मैं सोच रही थी पता नहीं चंदा आएगी कि नहीं. क्यों नहीं आएगी? चंदा की जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आ चुकी है तो चंदा को आना पड़ेगा. आप बताएं कब इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम? वैसे मीरपुर खास में तो मिल रही होंगी अगर तो. आप बताइए कब परचेज कर रही हैं? वैसे डी स्किन का फेस वॉश अगर पर्सनली बताऊं भेड़ वाली सलाह का पाई ना तो डी स्किन जो फेस वॉश अनी डिस जाओ. जादू को ताम ना, जादू को ताम ना, जादू को ताम ना, जादू को ताम ना. ओके जी अलीजा भी हमारा शो सुन रही है. अलीजा को भी वेलकम कहते हैं. अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. मौलवी इस्लाम अदर कहते अदा चाला खुशी सफा चाक सलेट कलम भाऊ असा भी चुप करी अमां जो शो सफर में बुधू था कराची वनी रहा आयूं. अच्छा चुप करे ना बुधो बाबा थोड़ो थोड़ो गालायो गालाईंदा रहो छो तो हरकत में बरकत आहे. बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम कहते हैं. वफा मुमताज अली खोसो भाई हमें सुन रहे हैं. भाई जान खुशामदीद गोठ रईस गुलशन खोसो खां तमासा के ज्वाइन कयो आहे.

क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना सुन रहे हैं। खूबसूरत तो आप भी होने वाले हैं क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और सर, डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ जनाब इसे जो है ना डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, तो जनाब एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी क्रीम जिसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है, डॉक्टर्स का फार्मूला है। वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले जो ना थोड़ा सा घबराते हैं कि हम लगाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे ये चीज होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर। वैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपके चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तो चर्चे चल रहे हैं मेरी जान, इस्तेमाल कीजिए और आपको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट का।

अच्छा फजीला बात ये है ना कि भाई शादियों का सीजन चल रहा है तो आप समझ आइएगा। मैंने पहले बताया था ना कि मेरे खानदान में कुछ शादियां होने वाली हैं, तो बस वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही मतलब जिंदगी जो है ना वो सीधी सीधी जा रही थी, फिर हमारे माइट्रो ने शादियां कर ली। भाई शादी होती है ना, ब्याह होते हैं ना, मजो अच्छे इकेली जिंदगी नचो खाओ पियो एंड डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो। अच्छा यहाँ पर फरवा कहती है कि आप ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा रशीद कोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से, और कहते हैं अच्छा जिला हैदराबाद से। ठीक है जी, आपका शो बहुत नाइस है, थैंक यू वेरी मच रशीद भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथी ने स्मार्टू गोपांग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं लाड़काना यूनिवर्सिटी से अच्छा जा रहा हूँ कम्बर और आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस वॉइस, सॉन्ग की आपने फरमाइश कर दी, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगाएंगे। और अखलाक भाई कहते हैं जी जी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के बैठे हैं, क्या बात है जी।

बिल्कुल जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ एसएन अली बुगटी मौजूद है जी, लाड़काना गोठ रोहल खान बुगटी का तवां जो प्रोग्राम बुधो पया, थैंक यू सो मच मोहब्बत आइन तवान जो। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते वेलकम बैक मैम आर जे, थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बतें हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। अखलाक भाई कहते हैं सियारो अच्छी वयो बाबा, थोड़ो थोड़ो आयो आना, थोड़ो थोड़ो पंध में आयो, तरी ते चवान थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा छो तो खोड़ मानू जी या रूटीन हूँ तो जी सियारो इंदो आए या सियारे में खोड़ मानू जी ना पांच चेहरे की केयर करना है सफा घनी वो क्रीमू लगाइंदा है वो चवन तो भाई कोई भलो प्रोडक्ट असा वो जो असा सियारे में लगा सकू छो तो सियारो तकरीबन मुख्य लगन तो सियारो जो ना सीजन हों क्रीम्स यूज कर तो अगर तुम भी सियारे जो इंतजार करो था या तुम भी सियारो अची वो है तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी वो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो पाया तो डी स्किन जो फेस वॉश उन गड लाजमी वो डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना इन के बारे में तुम्हें थोड़ा बुधाई हलां तो डी स्किन जो जो फेस वॉश है सब का पैरी गाल डी स्किन फेस वॉश जो तैयार थियल है बाबा हाइलोरोनिक एसिड सीरम से इनको जो फार्मूलो है ना वो एतरो जबरदस्त रखो वो है अगर तुम यूज कर पाया या तुम यूज करने की तैयारी में आयो तो जल्दी कर बाबा ही ढो सुठो मौको आनके हथ मान विजो हाने वो पानी करीबी जनरल स्टोर से उतना मालूम वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश मिले तो को नालो वी कर तलब कजो छो तो कुछ वरी दुकानदार एडा हूं थोड़ा वो हूं मतलब थोड़ा चंदा टोपीबाज अगर तुम था चो था दादा असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश दे तो वो वही चवंदा उन्होंने न हों ना प्रोडक्ट तो चवंदा भाउ तुम ही प्रोडक्ट खड़ी वो ही हले वो ही भलो अव ही हि कर छी उ छी उनके तुम चेजो अदा फुल स्टॉप लगाए असा डी स्किन क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश ही खपे गाल खत्म अगर तुम वट ना तो पे दुकान से अवेलेबल कराए वो जी नंबर तक प्रोग्राम बुधाया थी वो नंबर तुम भा के दई चो चो सदा इन नंबर से राबो कर भा साहब के बुधायो तो तुम ही नंबर से राबो कर गोठ में तुम दुकान से अवेलेबल कराए सो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश छो तो तुम जो दुकान से भी अवेलेबल हूं तो तुम भी फायद पव समझो था जे भी दुकानदार भाई असा बुधन पाया वो नंबर से राबो कर दुकान से तुम अवेलेबल कराए सो था जे तुम भी थोड़ा कूड़ न गालो दुकानदार भी ये कहना तो बाबा को प्रोडक्ट ना ही उन्होंने चाहता ग्राहक जो है खाली हथ न वे तो उनके खाली हथ बेशक न मोटाओ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश हुजन लाजमी है तो बिल्कुल खोड़ गाल तुम्हारे साथ प्रोग्राम में पूरे पूरे टे बजे तीन होंद तुम्हारा सात टे बजे तीन होंद पर तुम्हारा हूं न ये तुम मुझे बुधा टॉपिक से भी गालो थोड़ा तुम खूबसूरती जो ख्याल कि रखा इतने टाइम थो है जरा न्यूज ब्रेक वो था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी तुम्हारी मोटी अचू था कारी नमन जो इतने बैठा हो जो ओही मनी ओही मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद के इंतजामी मॉडल बनाने की तैयारी मुकम्मल थी चुकी है। कमेटी में लंदन, वाशिंगटन और दिल्ली मॉडल से बहस कयो वयो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो आहे त ड्राफ्ट सभी पार्टियों से शेयर कयो वेंदो। इत्तेफाक राय का पोए बियो मरहलो शुरू थींदो। रेफरेंडम जो बियो नालो अवाम जी राय आहे। पीटीआई पारां सूबन जे विरांगे जे मुखालफत पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आईन खिलाफ वञी सूबन जे विरांगे जी हिमायत न कंदासीं। आईन वाज़े आहे त सूबे जे विरांगे लाइ लागापियल सूबे जी असेंबली ई मंज़ूरी कंदी। पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द कर छो। आलमी बिरादरी का नोटिस जो मुतालबो। परे ऑफिस मूजिब एक तरफ का तकरारी कदम वलारियल कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सगन। ही मामलो गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के एजेंडा जो हिस्सो है। भारत कश्मीरी अवाम के हक डेण का वायदा पूरा करे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: Setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने अनम सईद स्पेशलिस्ट अल्ट्रा दी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दमु।

डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो खोड़ सारियों गालू तवा सा कंदा रहंदासी बाबा पूरो प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाले आए तवा से सगन मौजूद आयो तो तवा के भी शामिल प्रोग्राम कयूं था तवा मा खोड़ सारे मानो जा संगे कमेंट्स ए मैसेजेस मिलंदा वनन था सो देसो था केर केर से सगन दाही किथा किथा तवा सके ज्वाइन कयो आ सो यस असा के इते ज्वाइन कयो आ मुख्तियार अली लाशारी भा वालेकुम अस्सलाम मदीना मुनवरा का तवा सनो प्रोग्राम बुधो पया थैंक यू वेरी मच ताजो मोहब्बतू आ शौकत अली हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम और जी जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं और हमारे साथी जी सागर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम काफी वक्त खां पोए अज कार में रेडियो हलायो सो तमा जो प्रोग्राम हले पयो वो भला शामिल कयो प्रोग्राम में सुठड़ो गानो भी बुधरायो बिल्कुल जी तमा के शामिल भी कयो पया ता के सुठड़ो गानो भी बुधायो प्या बियो हालवाल जो ठीक ठाक आयो अई हालवाल जो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कने इस्तेमाल कयो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा लगायो बाबा सोना सोना थी वेंदा अई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सागर ता के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रयो है जेके मानो सा के फेसबुक ते बुधन था ना उए जदी ही फेसबुक ते वीडियो दिसना होंदा त तमा उन मा अंदाजो लगाए सको था द डी स्किन ब्यूटी क्रीम अई डी स्किन जो फेस वॉश आ है वो केडो सुठो आए प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आ सो वन्यो अई वठी अचो और अखलाक भाई कहते हैं दुकानदार रखे चो सिदरा वारी क्रीम दियो न बाबा दुकानदार चंदो केड़ी सिदरा वारी क्रीम नालो बुधायो सो तमा उनके नालो बुधा था बाबा असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण आया आयो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी पो वेंदासी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगान जा खोर सारा फायदा है जेके तमा के मिलंदा जेडी तमा इस्तेमाल करा अच्छा ही असा सगर मौजूद है गोठ बखू देरो बाकरानी ओके आगे तमाल छा लिखो है शेर खान जतोई से गड मौजूद है और अबूजर जतोई और समीना जतोई शानजे जतोई अवां के बुधू पया अदी की आयो असांखे तव्हांजो खिलण वणंदो आहे अच्छा तव्हांखे खिलण वणंदो आहे थैंक यू वेरी मच पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदा पोइ तव्हां सभिनीनि खे वणंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी करे ॾिसजो ऐं अल्ताफ बलोच जागजानी हमारे साथ कहते हैं प्लीज प्ले शमन हाज़िर तव्हांखे ॿुधायूं था ऐं डेडिकेट अज़रा खोसो बिस्मिल एंड मी ओके थैंक यू और कहते हैं दोबारा आपने अच्छा दूसरी फरमाइश अगर वो ना प्ले हो सके तो ये वाला लगा दीजिएगा डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड मी ओके थैंक यू प्यारे चाचू को वेलकम कहते हैं अच्छा कश्मीर से भाई आपने अखलाक भाई ने भी गाने की फरमाइश करी है क्या बात है जी गाना लगाते हैं आपका ज्वेलरी खां खालिक लाशारी है कहते शो तवाजो वी आई पी आ शमन जो गानो बुधराए जो अंदाज तुंजा मुखे वणी व्या मां ॾिसां थी इहो गानो अगरि मिली वियो त बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधरायूं था बाबा और ऐसे शो खालिद अली हमारे साथ है खालिद आलम खान है ओके जी खालिद आलम खान मोहम्मद खान आप दोनों को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और जी समीउल्लाह हमें सुन रहे हैं समीउल्लाह कहते हैं हाय हम कह रहे हैं हेलो मोहम्मद मीरन जगरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से भाई जान कैसे हैं ठीक ठाक है और हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम इतना बड़ा हाँ जी आप भी गोरे हो जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो हिदायतुल्लाह लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और लुबी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी है वालेकुम अस्सलाम सिटू जानी क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूँ नाइस यू थैंक यू वेरी मच लुबना और गुलाब खान गुलाब गुल हमारे साथ हैं गुलाब गुल कहते हैं सलाम ए मोहब्बत बाजी दादू सिंध से गुलाब गुल आपका शो सुन रहे हैं और डॉक्टर कुर्बान अली कमरानी गुड शो नाइस होस्टिंग थैंक यू वेरी मच आप भाइयों को वेलकम कहते हैं सुमाटू लिखते हैं कि आपके नाम से होनी चाहिए क्रीम सिदरा ब्यूटी क्रीम इतनी जबरदस्त लग रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो तवा के खबर पड़ी वेंदी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केडो फायदो आए तवा के तदी मिलो न जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर दिसंदा मुख्य तुम यो बुधा पैदा तुम पानी खूबसूरती जो ख्याल कि रखा वैसे खूबसूरती जो ख्याल तो हर कें रखन घुर्जे अगर तुम मर्द आयो तुम खवातीन आयो हर कोई बाबा खूबसूरती जो ख्याल रखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अच्छा ही प्रोडक्ट है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाओ जी तक खबर पे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह वाह

सागर भाई कहते हैं गिफ्ट कयो ना एक त लगाए दिसू फेस वॉश भी हा हा सब इते मुफ्त जे माल ते बैठा है पांजी वटो खबर पए व वैसे एतरी महंगी कोने का ता मतलब थोड़ी कंजूसी कयो था कंजूसी न कयो बाबा पाने खूबसूरती सा केड़ा लेखा।

ॾाढो भलो गानो जेको असां इंजॉय कयूं पिया. प्रोग्राम सुन रहे हे वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं. अच्छा, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, बाकी सारे दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता चले कि भाई जान मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम चल रही है. तो अभी अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहां से मालूमात लीजिए, आपको मिल जाएंगे. अगर नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में वो जरा डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उनको बताइए कि हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और साथ में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश हो जाएगा तो भाई क्या ही बात हो जाएगी. तो दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए. ओके जी, महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ है, कहते नाइस शो, ग्रेट होस्टिंग एंड ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी क्रीम. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कोई शक नहीं इस प्रोडक्ट में. भाई पाण असां इस्तेमाल कंदा आहियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम. ऐं पर्सनली हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहिंजो जीजू बि इस्तेमाल कंदो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एॾो वॾो फैन आहे. मां पुछांसि भई भाउ एॾा ई सफ़ा चिमको था, चए बाबा इहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां भी इस्तेमाल करण चाहियो था त तव्हां पाण बिल्कुल इस्तेमाल कयो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे, थोरो पाण ते ख़र्चो कंदा कयो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे.

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो ॿुधोसीं। हिकिड़ो ॿियो गानो असांजी लिस्ट में आहे, जी गानो हूंदो मंज़ूर सखिराणी जी आवाज़। हिन गाने खे बि ॿुधंदासीं ऐं ॾाढो भलो गानो आहे। धुम तनन धुम तनन जी तव्हांखे यादि ॾियारे छॾींदो। सोचो त इंजॉय कयो प्रोग्राम सुन रखे।

फैंसी ही गानों माना चला है जबकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर पाया। अगर तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पे तो बुधायो बाबा बुधायो शर्मायो चौथा। अच्छा ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी कंपेयरिंग माशाल्लाह जीती रहे। और सिद्रा सॉन्ग सुनाए जिसमें तू न हो जाए एड़ी दिल काडे कंदासी। अच्छा ठीक है मारे साथ ही तवाजो गानो हली वियो तो बिल्कुल हलायो था। अल्ताफ अलोट जाग जानी चाचू लिखते हैं कि प्ले शमन हाजिर चाचू हलायो था थोड़ा सबर कयो। मकसूद मल्हा कहते हैं मैं तो ऐसा ही है बिल्कुल जी। अब आप चश्मा लगा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए।

ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਆ ਤੂੰ अगर नाए भी सोना तो का गाल कोने का बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आए वनो वठी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ए सोना थी वनो अच्छा समीरो चौहान हमें सुन रहे हैं मिठी से आप हमारा शो सुन रहे ओके जी बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं ओके जी हिदायतुल्ला कहते हैं मैं आपको पता है इतने दिन से आपका शो क्यों नहीं अच्छा शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे सही है जी सिखो ना पो कभी सिखंद हुआ की अच्छा सागर भाई कहते हैं इंशाल्लाह वठी अचबो जरूर यो ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह मजे में तां बुधायो कारे गुम थी वेंदा आयो बाबा प्रोग्राम में शामिल थींदा रहंदा कयो ये मानो खबर पवंदी आ त मार्केट में केड़ा केड़ा प्रोडक्ट हलंदा अच्छा अगर एकड़ी या भी गाल आए मैं हमेशा तवा सा कंदी आ अगर तवा पाने कोई प्रोडक्ट नथा लगाए सको यानी कुछ मानन के सफा घणो स्किन जो प्रॉब्लम होदो आए हु न कोई प्रोडक्ट लगाए सगन आए तो चलो अगर तवा नथा लगाए सको तो तवा ही जके प्यारा प्यारा प्रोडक्ट आ है डी स्किन ब्यूटी क्रीम थी वई डी स्किन फेस वॉश थी वयो इन के तवा के ही पांजे प्रिय प्यारे के गिफ्ट भी दई सको था समझो दा अगर ता पान नथा लगाए सको तो ता के गिफ्ट दई सडियो यो माना बराबर थी दो हिसाब ता लगाए या कोई वो लगाए तो तुम पान न था लगाए सको तो तक प्यारे पीढ़ी के गिफ्ट करे सजो वाह वाह थी वेंदी अच्छा गुलाब भा तुम मोहब्बत है तक प्रोग्राम आने पो थैंक यू अच्छा ये मुगल उमरानी भाई हमारे साथ हैं वेलकम कहते हैं भाई को चले यहाँ पर आप ये गाना एंजॉय कीजिए जरा और बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बिलाल अली हम यहाँ पर ले रहे हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूँ जाकर यूँ वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
3: ॾाढो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़.

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सखरन मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इतावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जरा आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं हमारी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा हम आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे। वैसे तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे हमें पहली मरतबा सुन रहे होंगे या जो बहुत ज्यादा टाइम के बाद हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, तो ये वाली चीज भी आ जाती है कि उनको बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आपको भी पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तमाके भी खबर अजन घुर्जे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा केतरा सारा फायदा चले तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना तो तमाके केतरी सारी खूबसूरती मिली सके थी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर में आपने लाजमी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को शामिल कर लेना है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना वो इतना जबरदस्त रखा गया है। ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और इसे जनाब तमाम डॉक्टर्स की स्किन केयर के जो डॉक्टर होते हैं ना, यानी कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनकी निगरानी के अंदर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और साथ ही साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिल रही है बल्कि बाहर की ममालकात में भी आपको मिल जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको फौरी जो है ना वो निखार देती है और बहुत अच्छा वाला निखार देती है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ना वाइटामिन ई बीड्स के बारे में बताती चलूं। जैसे कि मैं आपको बताती हूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, तो आप लोगों ने ये चीज जरा देखी होगी कि जो खवातीन फेशियल वगैरह करवाती हैं और फेशियल के अंदर होता है ना कि आपको लगता है कि भाई फेशियल कराने से जो ना स्किन आपकी ज्यादा निखर आती है, ग्लो आता है आपके चेहरे पर, आपकी स्किन जो है वो जरा अच्छी हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर आप कोई भी ब्यूटी क्रीम लगाते तो वैसा आपको निखार नहीं मिलेगा जो आपको फेशियल से निखार मिल रहा होता है, खास करके जो खवातीन मुझे सुन रही है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती तो इसके अंदर जो ये वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन रखे गए हैं, एड किए गए हैं, तो इसका बिल्कुल यही काम है कि आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बनाए, इस तरह प्यारा बनाए, इस तरह आपके चेहरे पर ग्लो आ जाए, इस तरह आपके चेहरे की स्किन टाइट हो जाती है, आपके चेहरे के जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं या एक्नी के निशानात होते हैं ये तमाम चीजें भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको मिलती है एक परफेक्ट वाली खूबसूरती। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि ऐसा वाला कोई प्रोडक्ट होना चाहिए आपको लगता है कि भाई जो हम इस्तेमाल करें हमारे चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ती रहे, खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं हो, तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट साबित होने वाला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा वाला रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपको तरीकेकार नहीं मालूम, तो तरीकेकार भी थोड़े से बताते चलेंगे। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सोने से पहले, ये एक नाइट क्रीम है। वैसे तो कहते हैं ना नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको केयर जो है ना वो इस तरह से करनी होती है कि आप सबसे पहले अपना फेस वॉश कराते हैं। और अगर आप डी स्किन फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को अच्छे से सुखा लीजिए। वैसे ये भी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं या नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप जो है ना अपने चेहरे को ज्यादा ऐसे मसाज नहीं किया करें। मसाज जो अगर आप अपने चेहरे को करते हैं, जो फेस वॉश भी करते हैं तो फेस को रगड़ रहे होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से, तो ऐसे नहीं किया करें। सॉफ्टली आप अपने हाथों को अपने चेहरे पर ऐसे राउंड राउंड करके घुमाया करें और अच्छे से वॉश किया करें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया करें। पानी जो है ना वो अगर ऐसा वाला सीन है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहती है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे चीज होगी, रूखी सूखी सी स्किन है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से फौरन बाद आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन ग्लोइंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपके चेहरे पर आती है वो खूबसूरती जो कि खवातीन बहुत ज्यादा वाले पैसे देकर फेशियल करवा के आती है ना, बिल्कुल वैसी खूबसूरती। अगर आप भी चाहती हैं घर बैठे मुनासिब सी कीमतों में बिना टाइम को जाया किए आपको मिले खूबसूरती अच्छी वाली और महफूज वाली खूबसूरती, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये खवातीन के लिए भी है और मर्द हजरात के लिए भी है। ऐसा नहीं कि अब मर्द हजरात सोचें कि हम लगाएं या ना लगाएं क्योंकि खवातीन की बातें हो रही हैं, तो ऐसा कोई सी नहीं है। आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात, खवातीन, हर किसी की स्किन के मुताबिक है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार ही किया है स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, आप दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें साथ में लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए।

की क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपके गोट में नहीं मिल रही, आपके गाँव में नहीं मिल रही, आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं मिल रही, आपके सिटी में नहीं अवेलेबल, तो जल्दी से डायल कीजिए जनाब, जो नंबर अभी आपको बताने लगी हूँ, और नंबर के ऊपर रापता करेंगे तो फौरन ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और उन्हें भी पता चलेगा कि कहां कहां पर अभी तक अवेलेबल करानी बाकी रहती है। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-273-4309-033-27-38-4309। बिल्कुल जी, यही नंबर से जो कि आप डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए।

ओके जी, क्या बात है, जिंदाबाद थई जवानी जिंदाबाद, बहुत ही प्यारा गाना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने पा जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी दर्दे दिल हमें ज्वाइन कर चुकी है और लिखती है कि चंदा चले इस बात को तो छोड़ ही दें, और कहती मेरी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि मैं अपनी पसंदीदा इंसान के साथ बेतहाशा बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पसंद नहीं तो मैं उसके सामने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ। क्या ही बात है जी, बहुत बढ़िया, आपको वेलकम कहती है स्वीटी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी मायरा, हमारा शो सुन रही है। मायरा वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, कहती है मैं भी बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाऊंगी। और आप बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा वाला सीन बन जाएगा ना, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना माइक्रो बीट्स हैं, विटामिन ई बीट्स हैं, और ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये जब इसके अंदर ऐड की गई हैं तो क्रीम की जो खूबसूरती है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी वाली खूबसूरती जो कि खवातीन बहुत ज्यादा महंगे महंगे फेशियल करवाने के बाद भी नहीं हासिल।

कर पाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपका टाइम भी बचाएगी, आपके पैसे भी बचाएगी और आप घर बैठे मुकम्मल खूबसूरत हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे वाले रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ट्राई करके देखिए, जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और जनाब उसके अलावा मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे सॉन्ग सुनकर कोकिला याद आ गई वही तो मैंने पहले ही बोला था फरवा गुला में सुन रही थी आपी, आपका शो बड़ा सुपर डुपर जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच फरवा। और बिलाल कहते हैं कोई प्यारो पिरी कोने को छो भला कोने को ये सफा ये न क्यों बाबा।

ज्वाइन करेंगे तो आपका गाना लगाएंगे, नहीं तो मैं कल आने वाली हूँ ना, तो कल आपका गाना सुनेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है। अच्छा फरवा, आप हमें सुन रही हैं तो आपने जो गाना बोला था ना, वो मैं आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुना दूंगी। वैसे जो आपने फरमाइश करी थी वो इस तरह की थी, वो टोन उसका ऐसा था कि वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ही सुना जाए तो अच्छा था। ओके जी, आप क्या करेंगे, फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि भाई हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, उन तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाता है और वो भी इस चीज को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि उनको अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, खूबसूरती के मामले में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, और खूबसूरती के मामले में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो क्या ही बात है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं जनाब, मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, हर किसी के स्किन के हिसाब से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जानते ही जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फार्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तो जान लें और पहचान लें कि इतना प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो फायदा उठाइए। Hehehe

जी ओ जी, बड़ा प्यारा गाना था जो हमने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि शायद बब्बर की आवाज में होने वाला है। इस गाने की भी किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दी थी, तो जरा हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी रमीज नहीं रमजान अली भाई। रमजान भाई कहते हैं कि दिल लगी में दिल गया, मुझे दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अरे मैं रोता हूँ, मेरा दिल गया, तू क्यों मुस्कुरा रही है, तुझे क्या मिल गया। क्या बात है जी, क्या बात है। और फरवा की दी आप ही ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरवा। अखलाक भाई कहते हैं मूव इट शेर जो ऑप्शन ना है ये ना क्यों बाबा, सबने वट ऑप्शन आई, ये बहानेबाजी बंद करो। और रमजान भाई कहते हैं बहन इतने दिन कहाँ गुम थी आप, मैं तो यहीं पर थी। और ये चाचा खालिद कहते हैं अल्लाह हाफिज बेटा सिडो, टेक केयर। आप भी चाचा अपना ख्याल रखिए, वैसे आपने अपनी तबियत के बारे में तो बताया नहीं। फिर कहते हैं कि भाईटी वेगी भाईटी मुझे तबियत जो पूछे ही कौन थी। अच्छा रशीद खोसू भाई कहते हैं बहुत अच्छा बलोची सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सारे भाइयों को वेलकम कहते हैं। वैसे भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करके देखिए, और डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। फजली कहती है ओए प्यारी लगता है पता नहीं अब क्या मसला है, कुछ तो है, लेकिन चलें फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है।

टाइम भी तेजी से गुजरता जा रहा है हमारे यहाँ पर मोकलाणी का टाइम हो चुका है। इजाजत वठंदासी तव्हां खां मुखलिस मोहम्मद हाशिम सुमरो असां गॾु मौजूद आहे ऐं तव्हां असांखे किथां खां ज्वाइन कयो आहे। तव्हां सां गॾु आहे शहज़ादो गुलफाम एंड शहज़ादा गुलमुनीर सुमरो टंडो मोहम्मद खान से बेहतरीन शो मोहतरमा आरजे साहिबा थैंक यू वेरी मच जी आप भाइयों को वेलकम कहते हैं। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है जी मुनासिब सी कीमतों में। बस अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए वहां से मालूमात लीजिए मिल रही है तो बढ़िया नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रहे हो उसके ऊपर रابطہ कीजिएगा। भाई साहब का जीना हराम कीजिए जब तक आपके करीबी जनरल स्टोर पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करा देते। तो जल्दी से नंबर के ऊपर رابطہ कीजिए कॉल कीजिए मैसेज कीजिए उनको बताइए कि फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है। और इसी के साथ साथ वरी

मुलाकात मुझे थे पई बाबू पंज बजे वाली प्रोग्राम में सो पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखिंदा केते का गलती थी हुजे तो माजरत कयूं था जेड़ा फीडबैक रहजी वया हैं जिनजा गाना रहजी वया हैं सभी का माजरत कयूं था सो मोकलानी ना ही बाबू सिन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे
2: जी साहब।
1: जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग करेंगे।
2: जी साहब मुझे मोशन पुट करने दे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
3: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरणी तरमीम ऐं सूबनि ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फारम 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसला न कंदा। पहिरीं हीअ अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसला फारम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाईंदा कंदा। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जी लीना मेमण चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले। बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु बि न थींदो। वफ़ाक़ सिंध में 77 सालनि खां हिकु ॿिए मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी यूरोप जो दौरो मुख़्तसिर करे छॾियो। सुभाणे ॾे वापसीअ जा इम्कान। ज़रियनि जो चवण आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी ॿिनि ॾींहनि खां फ्रांस वञणो हो। हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुल्तवी करे सुभाणे लंडन खां ॾे वापसि थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अमेरिका सां इतिहाद अहम आहे पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो थियणो पवंदो। कचरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान मजीद चयो आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमेरिका ते भाड़ण बदिरां स्ट्रेटेजिक मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो। सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ाई यकीनी बणाए सघिजे थी। पीटीआई अवाम जी मर्ज़ी बिना सूबनि जे विरांगे जी मुखालफ़त करे छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अवाम जी मर्ज़ी बिना सिंध जो विरांगो थियो त वफ़ाक कमज़ोर थींदो। सूबनि जे क़याम बाबति तकरारी कानून साज़ी न थियणु घुर्जे। हीउ संजीदा मामिलो आहे, बहस थियणु घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरांगे जी हिमायत न कंदासीं। आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरांगे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली मंज़ूरी ॾींदी। पाकिस्तान भारती बयान खे रद्द करे छॾियो। आलमी बिरादरी खां नोटिस जो मुतालबो। परडे ऑफिस मूजिब हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम हलारियल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि। हीउ मामिलो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे एजेंडा जो हिसो आहे। भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ ॾियण जा वाइदा पूरा करे। सप्टम्बर ऐं मई वारे जंगनि में पाक फिज़ाए जे शाहिननि आला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जो फिज़ाए जे ॾियारी ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन कहिड़ो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक फिज़ाए जे शाहिननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मंझराई आहे। सप्टम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। लाहौर पुलिस पीटीआई जे गिरफ़्तार हमाद अज़हर जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी। लाहौर पुलिस मूजिब हमाद अज़हर अरिड़हं केसनि में घुर्बल आहे ऐं 3 सालनि खां रूपो छो। जांच पुलिस हमाद अज़हर खे गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे हमाद खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो।
8: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियणु औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि थईए में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
8: जी हाँ, 2311-2525-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
5: जी हा, 2311-2525-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अड़ताली वारनि नफ़र आवाम जा चूंडियल नुमाईंदा कंदा। सिंधी असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु बि न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी यूरोप जो दौरो मुख़्तसिर करे छॾियो। सुभाणे ॾह वापसीअ जा इम्कान। ज़रियुनि जो चवण आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी 20 ॾींहनि लाइ फ्रांस वञणो हो। हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुलतवी करे सुभाणे लंडन खां ॾह वापसि अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अमेरिका सां इतिहाद अहम आहे पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो थियणो पवंदो। कतरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान मजीद चयो आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमेरिका ते भाण बदिरां मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो। सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ा यकीनी बणाए सघिजे थी। पीटीआई अवाम जे मर्ज़ीअ बिना सूबनि जे विरहाङे जी मुखालफ़त करे छॾी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अवाम जी मर्ज़ी बिना सिंध जो विरहाङो थियो त वफ़ा कमज़ोर थींदो। सूबनि जे क़याम बाबति तकरारी कानून साज़ी न थियणु घुर्जे, ही संजीदा मामिलो आहे, बहस थियणु घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो आहे त 73 जे आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरहाङे जी हिमायत न कंदासीं। आइन वाज़े आहे त सूबे जे विरहाङे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली ई मंज़ूरी ॾींदी। पाकिस्तान कश्मीर बाबति भारतीय बयान खे रद्द करे छॾियो। आलमी बिरादरीअ खां नोटिस जो मुतालबो। परडे॒ही आफ़ीस मौजूब हिकु तरफ़ खां तकरारी क़दम हलारियल कश्मीर जी हैसियत सां तब्दील नथा करे सघनि। ही मामिलो गडि॒यल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जी एजेंडा जो हिसो आहे। भारत कश्मीरी अवाम खे हक़ डि॒यण जा वाइदा पूरा करे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंगनि में पाक फिज़ाए जे शाहीन नाला किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जो फिज़ाए जे ॾियारे ते पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हक़ वारी जंग में साबित थियो त दुश्मन कहिड़ो बि ताक़तवर हुजे असांजे अज़म खे शिकस्त नथो ॾेई सघे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाक फिज़ाए जे शाहीननि पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण विञाई आहे। सेप्टेम्बर ऐं मई वारी जंग में दुश्मन खे शिकस्त ॾिनी। लाहौर पुलिस पीटीआई जी गिरफ़्तारी। हमाद अज़हर जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर करे छॾी। लाहौर पुलिस मूजिब हमाद अज़हर 18 केसनि में घुर्बल आहे ऐं 3 साल रूपो शो जांच पुलिस हमाद अज़हर खे गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे हमाद अज़हर खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में घोटकी जे फहमीदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी। फहमीदा खे बाज़ियाब न कराइण ते अदालत पारां डीआईजी सखर मथां कावड़ जो इज़हार। अदालत आईजी सिर खे ईंदड़ हफ़्ते तलब करे वरितो। अदालत चयो आहे तव्हां औरत खे बाज़ियाब न करायो, तव्हां छो आया आहियो? आईजी सिर खे पेश थियणो हो। मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन आॾो। मीर रज़ा जा वारिस ऐं दोस्त केश कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त खां सवाल कयो तव्हां खे कीअं ख़बर पई त मीर रज़ा गुम थी वियो आहे। दोस्त जवाब ॾिनो त मीर रज़ा जी मंगेंदी ॿुधायो आहे त आख़िरी भेरो मीर रज़ा सां मुलाक़ात 28 जुलाई ते थी हुई। ककड़ भरसां कलोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े दौरान मारिजी वियल नौजवान जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। नौजवान जाफ़र कलोई जे वारसनि लाश रखी धरणो आयो। नौजवान खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। एहतियात जारी रखण जो चिताव। सकरण वेझो ॻोठ रहमो किरियो में एचआईवी जा वधीक 13 नवां केस ज़ाहिर। ॻोठ में एचआईवी मरीज़नि जो अंगु वधी 33 थी वियो। ॻोठनि में एचयूपी समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाण जो मुतासिर मरीज़नि जो इलाज न थियण ख़िलाफ़ एहतियात। मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जूं सहूलियतूं ऐं दवाऊं ॾियण जो मुतालबो। लाड़काणे जे एयरपोर्ट थाणे जी हद मां ॿ वापारी अॻवा। परडे जी वासी नवाब अली सूमरो ऐं संदसि दोस्त पीपी अॻवाण दीदार अली बहन गाॾी समेत अॻवा कयो वियो। अॻवा जे इतलाउ बाद पुलिस जांच शुरू करे छॾी। ॿुधायो पियो वञे त मुगविन जी गाॾी बलूचिस्तान वारे एरिया मां थाई आहे जॾहिं त ॿिन्ही मुगविन जा गर्भाती सख़्त परेशान आहिनि। दड़ो भरसां भाउ हथां भेण क़तल। ॻोठ मौलवी अहमद भरसां जवाबदार ख़लील मंगसी फायरिंग करे भेण दुआ खे क़तल कयो। जवाबदार फरार, कारण मालूम न थियो। शहदादकोट में क्रिकेट रांदि खेॾण दौरान ॿारनि जी ॻाल्हि तां झेड़ो लठियो ऐं सरोटा लॻण सबबि 8 ॼणा ज़ख़्मी। लगारी भटी चांडिया ऐं बिरोई बिरादरी जे माण्हुनि में झेड़ो थियो। लगारी बिरादरी जे माण्हुनि केस न थियण ख़िलाफ़ मस्तोई मोहला में रोड ते धरणो आयो। केस दाख़िल करे जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। फेसगंज ऐं वेपासे में मंशियात जे आज़ार ख़िलाफ़ शहरनि जो पका चांग में एहतियात। इलाइक़े में मंशियात जा मौजूदु अॾा बंदि करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरनि चयो त मंशियात पुलिस जी सरपरस्तीअ में हली रही आहे। शहरनि सां गॾु ॻोठनि में बि मंशियात जा अॾा क़ाइम कया विया आहिनि। मंशियात विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। थरपारकर जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हरदास भक्त जो गादी नशीन भक्त माथूराम ध्यानु करे वियो। सोग में मिठी शहर बंदि। माथूराम जूं आख़िरी रस्मूं अॼु अदा कयूं वेंदियूं। पिंगरियो में इंटर की शागिर्दानी रूसा खोसो के तंग कंदड़ो बाद छोकर से केस दाखिल। रूसा खोसो के वालिद हुसैन बख्श खोसो की फरियाद से पिंगरियो पुलिस जुनेद खोसो ए सरफराज खोसो से केस दाखिल कर पुलिस जवाबदार के अजा तीन गिरफ्तार न कर। हिंगोर जा भरसा कौमी शाहरा से आयल टैंकर जो कार के टक्कर बजना फोत। हादसे में जावेद अली शाह समेत बजना फोत थिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। भिरिया रोड में कराची का लाहौर विंदर तेजगाम एक्सप्रेस की टक्कर में नौजवान फोत। फोती नौजवान की सुणप भिरिया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक के नाले से कई गई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमड़ सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
5: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उसे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब गर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जेकर तवाखे मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, तो हाँ परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी और हाजमे के मसलन लाए आजमूदा और फायदेमंद कोरस है। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबह जो 9 वगे का शाम जो 5 वगे तई, हमजा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते के लिए फोन करियो 0302-36-36-879 और 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-32-41-230।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9 लगी 5

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के
2: उसके बाद
1: आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे
2: जी साहब।
1: जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग करेंगे।
2: जी साहब मुझे मोशन पुट करने दे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
3: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरड़ी तरमीम में सूबन ते गालाए रहा है। खैराती मैंडेट फॉर्म 47 ते आयल कौम जा फैसला न कंदा। पहिरीं ही अवाम वट वञन मैंडेट वठन पोए गालियूं कन। कौम जा फैसला फॉर्म 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शजीरना मेमन चयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि, न त खेनि जवाब बि मिली वेंदो। बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरी मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोडशेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

कख सड़न पन सड़न सड़े साओ गाह जन रिझायो अल्लाह तव न लगे तिन खे। सुवारी सिंध जे मलूक मिट्टी ते रहंदड़ तमाम मौजिस बुधंदड़न खे लाखिणे लतीफ जी बोली महरान जी छोली आई मिठड़ी अमड़ जे लोली जेड़ा सोहना सलाम GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे सजी टीम जा कुर्ब कबूल पवन। मौजे सामईन अवां जा कहड़ा हाल आहिन? अवां खुशबाश आहियो, अवां ठीक ठाक आहियो, अवां चाक चंगा भलाई मतारा जोड़ आहियो। असांजी दुआ आहे त सदाई तारन में चंड हुजो, खीर में खंड हुजो, मेवन में अंब हुजो, ऐं कॾहिं पवां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अवां जे लुड़कनि जे डुकार ऐं मुर्कुनि जो सुकार हुजे। शाल अवां खे कोसो वाह न लॻे, शाल अवां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, जुग जुग जीओ मुरकंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौज़ूदु सामईन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क।

हाज़िर आहे अव्हांजो पंहिंजो मनपसंद ऐं मालूमाती शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ीअ जी शाम शो साण करे अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर अव्हांजो मेज़बान अव्हांजो आरजे अव्हांजो पंहिंजो जी हा उहो ई साॻियो अव्हांजो पंहिंजो यूनिस बकारी।

वज़ीर सामीन जे करे अॼु के शो में तव्हां शामिल थियण चाहियो था त बिल्कुल शामिल थी सघो था, छाकाणि जो पूरे नेटवर्क ते ऑन ईयर आहियूं असां ऐं अवां सां अवां जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि सॼी सिंध में गूंजंदड़ सिंध जो ई आवाज़ GFM 88 जो आवाज़। त पोइ तव्हां मैसेज करण जे लाइ असांजो मैसेज जो तरीक़ो नोट करे वठो। लिखंदव पहिरीं MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, ऐं 888-188-81 असांजो नंबर आहे, हुन ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। असीं ॾिसंदासीं अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो। जी हा, हिकु दफ़ो ॿीहर तरीक़ो नोट करियो, MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी, पंहिंजो नालो 888-1 यानी 888-1 ते सेंड करे छॾियो। GFM खे ध्यान सां, गौर सां, प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां ॿुधण लाइ अव्हां जूं महिरबानियूं, अव्हां जूं मणे महिरबानियूं, अव्हां जा किरोड़े कुर्ब। त पोइ मौज़ सामईन, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हलूं था उन आवाज़ ॾांहुं जंहिं ते सिंध नाज़ करे थी। अचो त गॾिजी ॿुधूं साइण आबदा परवीन जो ई आवाज़। मिलूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफ एम मातली जी एफ एम मीरपुर खास जी एफ एम सकरंट जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मोरो जी एफ एम लाड़कानू जी एफ एम सखर जो गडियल आवाज अवां जो शो आहे सिंधड़ी जी शाम जेका आहे अवां जे नाम ऐं अवां जे मेज़बान अवां जो पंहिंजो उहो ई साॻियो अवां जो यूनिस बकारी लाखीणे लतीफ़ फरमायो त चेतारे चवंदियासि ॻाल्हियूं के सजणे जे मोह मुक़ाबिल थियासि त वयूं सभु विसरी अवां खे जीअ में जायूं ॾींदे चवंदासीं भलीकार जेकॾहिं अवां रेडियो सेट या इंटरनेट ते इंजॉय कयो पिया पंहिंजे शो खे अवां किथे किथे ॿुधो पिया उहो असांखे अहसासु तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां असांखे मैसेज मोकिलींदो तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे तव्हां पहिरीं पहिरीं लिखो MTI उनखां पोइ स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो छो त अव्हांजा मैसेज जीअं ई पहुचंदा जीअ में जायूं ॾेई शामिल कंदासीं सो मौज़े सामाईन अवां रेडियो सेट ते था ॿुधो या इंटरनेट ते अवां कार में ॿुधो पिया या बाज़ार में अवां घरनि में ॿुधो पिया वाहिणनि में वस्तियुनि में बस्तियुनि में या पंहिंजे मस्तियुनि में सो साईं जिते बि हुजो हुजो हशाश बशाश ऐं हा अव्हां जी मुर्क मेरी न थिए इहा त अव्हां जे लाइ हमेशा दुआ बि हूंदी दोस्तों अवां ॼाणो था त हिन दुनिया में इंसान खे सभ खां वधीक जेका ख़ुशी हूंदी आहे पंहिंजा तोड़े परावा उहे ॾींदा आहिनि जेके सजण थी बीहंदा आहिनि ऐं दुनिया में सभ खां तकलीफ़ वारो अमल इहो आहे त इंसान जेकॾहिं को कंहिं लाइ सड़े थो को कंहिं सां हसद करे थो हासिद जेको आहे सभ खां वॾी तकलीफ़ में हूंदो आहे छाकाणि जो हसद पंहिंजे ख़ुशियुनि खे त ख़तमु कंदो आहे पर हासिद जेको हूंदो परायनि ख़ुशियुनि ते हुई बि जलंदो रहंदो आहे हुनखे सुकून नाहे हूंदो अलाह ताला जे तरफ़ा ॾिनल इंसान खे केॾी बि ख़ुशी हुजे पर हासिद खे ख़ुशी नसीब नाहे थींदी छो त हू ॿिए ते हसद करे थो हुनखे भले 10 ख़ुशियूं मिलियल हुजनि पर उन खां कंहिं माण्हूअ जी हिकड़ी ख़ुशी बर्दाश्त नाहे थींदी इन करे तव्हां ॾिठो हूंदो त हासिद सॼो ॾींहुं हसद में सड़ंदो पचंदो रहंदो उन करे हसद न करियो मोहबत करियो ऐं दुआ ॾियो जेकॾहिं कंहिंखे ख़ुशि था ॾिसो त उन जे लाइ दुआ कयो अञा बि बाग बहार हुजे उन जे सदिके अलाह पाक अव्हां खे बि ख़ुशि रखंदो ॻाल्हियूं असां खोड कबियूं ऐं टेलीफोनिक ॻाल्हियूं तव्हां सां थींदियूं उहे त थींदियूं ॿिए कलाक में पहिरें कलाक में अॼु असीं चाहियूं था त तव्हां असांखे कुझु मैसेज मोकिलियो त पर ॾिसूं था केरु हूंदो असांखे ॿुधे थो उन जे लाइ असां मैसेज पेड ते हलंदासीं तव्हां टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 881 यानी 88 81 ते असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलिजो ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल त पोइ अवांजा मैसेज शामिल करण जे लाइ यकीननि प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे रंगनि में हलूं था ॾिसूं था त असांखे मैसेज कंहिं कंहिं मोकिलिया आहिनि जी जनाब

बुढ़े इस्माइल खान का असांखे बुधे पियो अलण खान अला बचायो। अच्छा जी अला बचायो असांखे बुधे तो रोतकाणी साहब अला बचाया कहिड़ा हाल आहिनि खुश आयो ठीक आयो चंगा भला गोठ शहीद मोहम्मद फाजिल राहू खां जुमन खासकेली साहब बुधे पे जुमन भा मेहरबानी भलीकार तवां लिखियो है डियर ब्रादर यूनिस सलाम वालेकुम सलाम थैंक यू भलीकार वेलकम मई वडा वड़ मिठा मानो ओके जनाब साज़े आवाज़ी साथ में अवाम शामिल थियण जे लाइ हाणे ई मैसेज करे छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल थियण जे लाइ मैसेज ते सो तव्हां बिना देर जे मोकिलियो मैसेज अॼु असीं ॾिसंदासीं असां सां गॾु केरु थो शामिल थिए। ओके जनाब त पए झलूरी खां ख़ालिक लाशारी ज्वाइन कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं मिठा माण्हू अव्हां खे भलीकार चवंदासीं। जाम खान लगारी खां अली रज़ा लगारी ॿुधे पियो आकिब ॿुधे पियो अव्हां सां गॾु अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी अव्हां खे बि चवंदासीं भलीकार थैंक यू ऐं अज़हर लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधे थो मोहबतूं वॾा वड़ ऐं पाबो वीरो थर खां असांखे दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो नोवल राय ऐं अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी ऐं दानिश कुमार तव्हां सां गॾु ॿुधे थो सूरज गुल थैंक यू भलीकार शंकर लाल बसंग ॿुधे थो अव्हां शो चयो आहे सुठो आहे मां थोराए थो आहियां तव्हांजो तव्हांखे शो सुठो लॻे थो बसि ॿियो छा घुर्जे। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली यादि कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआऊं मोहबतूं प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजा रंग मोकिलिया मैसेज में तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं प्यार तव्हांजो क़बूल पियो मिठा माण्हू थैंक यू। ऐं सरफराज़ जरवार असांखे यादि कयो आहे तमामु घणियूं महिरबानी खिपरो खां तमामु घणियूं महिरबानी जी असांखे सुमार भील ॿुधे पियो दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो ऐं अब्दुल हकीम बजीर ॿुधे थो अवां लिखियो शाल सलामत जो आमीन सुम आमीन ऐं अमीब जो बाग बहार शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो शाल अवां जी मुर्क मेरी न थी। साईं मुंहिंजे जुगनि खां जीअरी महिराण माथिरीअ जे मलुक मिटीअ ते जिते जिते तव्हां रहो पिया तव्हांजी ख़ुशीअ जा ख़्वाहिशमंद आहियूं असां ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी तमामु टीम तव्हांजे लाइ दुआगू आहे। अवां यकीननि जिते जिते हूंदो ख़ुशि हूंदो त असां बि ख़ुशि हूंदासीं अव्हां जी ख़ुशी में ई असांजी ख़ुशी आहे। साईं मुंहिंजे को वक़्तु कहिड़ो को वक़्तु कहिड़ो पर जंहिं वक़्त में पंहिंजा वक़्त ते न पहुचनि ऐं पंहिंजा परावा महसूस थियनि ऐं सजण सार न लहनि त पोइ तकलीफ़ थींदी आहे ऐं अहिड़ी उदासी अहिड़ी तकलीफ़ जलाल चांडीअ जे हिन ट्रैक में मौजूदु आहे जंहिंमें जंहिंजे लाइ इंतज़ारु हुजे जंहिंजे लाइ बेक़रार हुजे माण्हू ऐं उहो देरि करे अचे त पोइ हीअ मयार उन्हनि जे लाइ हूंदी।

जी जनाब साधे आवाज़ के साथ में उनके आगे जो असो कमर्शियल ब्रेक वठूँ का गॉल क्यों असं चाहूँ था जबरदस्त ट्रैक प्ले कर कमर्शियल ब्रेक न हलूँ तो तेज मैसेज मोकले था सनूबर मैसेज मोकलो है तिखो शवन मीराली जो ट्रैक है असें बुधा उन बोल जो तुम लिखी मोकल वो समझ में को पे अचन प्लीज एक दफा बीहर रिपीट मैसेज कजो और जी भेनरू भाई असें बुधन था प्लीज जैसे तुम सॉन्ग प्ले कर रिक्वेस्ट मोकलो था तो वह रिक्वेस्ट मोकलो इन तरीके से जो सॉन्ग जहाँ पे बोल उन लिखी अचन बहरहाल वूँ था ट्रैक इन शॉर्ट ब्रेक का वापस अची नो कमर्शियल ब्रेक हों बिना ब्रेक यूनिट बकारी वापस अब डेढ़ कलाक वो साथ निभा।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ॾाढो सुठो
0: GAFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

जी वेलकम भलीकार खुश आमदीद अमा बुध पे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के तमाम स्टूडियोज में अवे एक दफा बेहर भलीकार खुश आमदीद जिते बुझो खुश हो जो हशाश बशाश हो जो बिल्कुल हो सुठे मूड में सुठो वक्त अवे गुजरे अवे खोड़ सारी दुआऊं तो दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरों भायरों साज आवाज साथ में अवे प्यारा प्यारा मैसेज पहुंची चुका है जो कि शामिल कह हल्दी तो शामिल कहसी असा याद किया है हाजी सहतो साहब बुधे पे गोठ हाजी सहते में शहबाज खासकेली बुधे पे भलीकार साले सोलंगी बुधे तो ताज मोहम्मद सहतो बुधे पे आसिफ सहतो बुधे तो असद सहतो बुधे पे गोठ हाजी सहते का असा बुधे तो सिराज खासकेली सभी मिठन मानून के भलीकार खुश आमदीद वेलकम चौंदी सोना साई अवां के जी जनाब ही मोहब्बती मानन जो मेलो यकीनन सिंधड़ी जी शाम सिंधड़ी जी शाम में यूनुस बकारी यो सलाम सो दिसों था असा गद हाने हुंदो केर ओटे इस्माइल खान लोतकाणी खां असा के ज्वाइन कयो है अल बचायो लोतकाणी अवन मेहरबानी।

78 मोरी का असन ज्वाइन कयो आहे किशोर कुमार अवन भलीकार अवन मेहरबानी हीरा लाल अवन सके जी बुदे तो मोहब्बत हीरा लाल आई पवन कुमार तमा सबनी जो मोहब्बत हुई भलीकार इस्माइल खान नोतकानी खान अलाबजे नोतकानी भा अवन ब मैसेज घर घर पहुंचा मोहब्बत हूं थैंक यू वेरी मच आई मोजिस खातिन हजरात साज आवाज साथ में अवन सण अवज गाल जारी है ना अवं भी जैसे चाहे तो शामिल थियण तो मैसेज मोकले सोता लिखो तो MTI स्पेस दई पे गोठे शहर का नालो लिखो पे नालो 888-188-81 असंके हाने हाने मैसेज मोकलो तो खबर पवंदी तो असंके केर किथा का याद करे पो सजन सांगी की वांढ में असंके गुलाब गुल बुधे तो गुलाब गुल तहजू तमाम घणी मेहरबानी भलीकार लुटको मोरी सांगड़ का बुधे तो मोहम्मद साले लगारी लालबख्श बिलावल लगारी अवंजू तमाम घणी मेहरबानी उसामा लगारी वजह गजी बुधे पो किरोड़े कृप तहजा खुश हुजो आबाद हुजो थैंक यू ऐं असांखे यादि कयो आहे जी जनाब गोठ आलम खान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार साहब अवां लिखियो त तबियत सही आहे मिठा माण्हू बिल्कुलु तव्हांजे दुआउनि सां तबियत बिल्कुलु ठीकु ठाक तव्हां ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो ग़ुलाम हुसैन जलालाणी ॻोठ खां जी जनाब नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी असांखे ॿुधे पियो ऐं तमामु घणी महिरबानी भलीकार महबूब नाज़ जलालाणी ॿुधे थो ऐं थैंक यू मुख़्तियार नाज़ जलालाणी ॿुधे थो ऐं आरज़ू असलम जलालाणी किरोड़े कुर्बे अमल कयो असलम अलैकुम वालेकुम असलाम मिठा माण्हू मोहबतूं तव्हांजूं शाद हुजो आबाद हुजो ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाक हुजो सदाई सुखिया हुजो ओके जनाब त पोइ साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अवां असांखे यादि कयो पिया त हाणे हाणे लिखो जिन जिन महिरबानीनि खे तरीक़ेकार ॿुधाइणो आहे जल्दी सां नोट करे वठो लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88-81-888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो 88-81 साईं नंबर हूंदो जंहिं नंबर ते पर शुरूअ में MTI लिखणु बिल्कुलु न विसारिजो छो त MTI लिखंदो तॾहिं मैसेज असांजे स्टूडियो जी स्क्रीन ते पहुचंदो नोटो खां थरपारकर खां असांखे ज्वाइन कयो आहे रामचंद कुमार कोहली ऐं अवां सां गोविंद गुल ॿुधे पियो तमामु घणी महिरबानी थैंक यू अव्हांखे चवंदासीं भलीकार रामचंद ऐं जनाब असांखे डीपलो जे ॻोठ झपियो खां ॿुधे थो मोहम्मद सिद्दीक़ पाढ़ो रोशन अली पाढ़ो अवां लिखियो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू किरोड़े कृप तव्हांजा जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं सदाई सुखिया हुजो महिरबानी अव्हांजूं भलीकार भलीकार चवंदासीं तव्हांखे जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ में हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे ऐं वठूं था ब्रेक पहिरीं शॉर्ट ब्रेक वठी वठूं वरी अची वञे मैसेज शामिल कंदासीं त पोइ सुरैया सुमरो जो आवाज़ आहे गिज ॿुधी था वठूं त छा थी चवे सुरैया हिन ट्रैक खे इंजॉय कजो जिते जिते ॿुधो था तव्हां ॿुधो पिया लाड़काणू सखर मीरपुर खास मोरो मेहरापुर सकरंड मटियारी या मातली में जिते जिते तव्हां असांखे ॿुधो पिया बदीन खां बखर सीराणी खां सखर कींजर खां कारून जर ऐं केटी बंदर खां कश्मोर ताईं गूंजंदड़ हिकु आवाज़ GFM 88

जी जनाब, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, नंढड़ो ब्रेक हूँ। बस माई जो वापिस तो अचान छो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी नंढड़े ब्रेक का वापिस अचे तो यूनिस बकारी केदा न मंजो। बस इजो वापिस।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻराइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

खसे खिल रुअण जो ही राहू न रोकियो, लड़ियल लुड़क सुड़काई आहू न रोकियो, भले द्वार दिलजान पूरियल पटियो, पर विन्यायल उम्मीदुन जो वाहू न रोकियो। वेलकम बैक मौजी सामेन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क मां बुधो पिया अमज पेंजो शो सिंधड़ी जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अजो के अहां जे नाम अजो के शो में यकीनन अज सा अवां जा मैसेज शामिल कयो पिया। तकड़ो तकड़ो लिखी वठो, MTI स्पेस रही पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888

साईं कंधकोट खां असांखे ज्वाइन कयो आहे मेहर अली बलोच साहब। मेहर अली बलोच साहब, तमामु घणियूं मोहबतूं, वेलकम भलीकार कंधकोट जे हवाउनि मां मोहबतूं मोकिलण लाइ महिरबानी।

जी मज़े समीन साज ऐं आवाज़ जे साथ में यूनुस बकारी साथ ऐं ॾाढो सुहिणो साथ आहे असांजे हिननि 15 मिंटनि जे मैसेज वारे साथ खां पोइ हूंदो असांजो साथ कहिड़ो कॉल्स वारो हूंदो साथ साईं मुंहिंजा ॾिसंदासीं त कॉल्स में असां अव्हांखे शामिल कंदासीं पर फ़िलहाल त कॉल न कजो ईअं न थिए जो तव्हां हाणे ई कॉल करणु शुरू कयो ऐं हाणे ई कॉल बिल्कुलु कोन हूंदी हलो कॉल जो टाइम जेको हूंदो उहो न्यूज़ खां पोइ हूंदो इन जे करे तेसिताईं असां मैसेजिस शामिल कयूं पिया असां कोशिशि कयूं पिया त तव्हां असांजी बि ॻाल्हि ॿुधो ऐं पंहिंजी ॻाल्हि बि असांखे ॿुधाए वठो छो त जेका लिखत वारी ॻाल्हि हूंदी उनजे ॿुधाइण जो अंदाज़ पंहिंजो ख़ूबसूरत अंदाज़ हूंदो आहे सो ॾिसी था वठो त असांखे केरु थो यादि करे इरफान अली थेबो साहब असांखे ॿुधी रहियो आहे साले पुट खां उनजी तमामु घणी महिरबानी साले पुट खां अवां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो था मोहबतूं मिठा माण्हू ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं नोटो खां असांखे ॿुधे पियो जी नंढड़ी रवीना ॿुधे पई ऐं कमलेश ॿुधे पियो ऐं रजीना कुमारी ॿुधे पई अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं रामचंद कुमार बि ॿुधे पियो भलीकार चवंदासीं सभिनी खे थैंक यू मटियारी खां सनोबर जो मैसेज पहुतो अवां जूं महिरबानियूं भलीकार अवां लिखियो त शमन जो ट्रैक ज़रूर ॿुधाइजो बिल्कुलु असांजी क्यू शीट में शामिल आहे शमन अवां ॿुधजो त तव्हांखे उहो गानो कीअं थो लॻे समय साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अवांजा मैसेज अवांजो साथ आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां अवां असांखे लाइव ॿुधो पिया जेके महिरबानी रेडियो सेट इंटरनेट ऐं फेसबुक ते ॿुधनि पिया सभिनी जूं मोहबतूं जेकॾहिं अवां असांखे ज्वाइन करे चुका आहियो ऐं हा जेके महिरबानी परॾेह में असांजे लाइव शोज़ खे ॿुधणु चाहिनि था उन लाइ असांजी लाइव स्ट्रीमिंग आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे तव्हां गूगल ते सर्च कंदव असांजी सॼी एप्लीकेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदी जेके बि अठनि स्टेशननि मां तव्हांखे जेका स्टेशन वणे थी उनखे तव्हां लाइव ॿुधी सघो था ऐं जेके असांजा शो जेके नेटवर्क जा हूंदा उहे त तव्हां जंहिं स्टेशन खे क्लिक कंदो तव्हां सां गॾु हूंदासीं सची पची त पोइ जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे गूगल ते बि सर्च करियो दुनिया जे कुंड कुर्छ में अवां सां गॾु जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जेको सिंध जो आवाज़ आहे सिंध जूं सदाऊं खणी अवां ताईं पहुचनि ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची दिलि भरे करियां मां दीदार तुंहिंजो प्यास नेणनि जी लहे जे तूं अची सो जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त सुठियूं ॻाल्हियूं सुठा गाना सुठा ट्रैक ॿुधण सां माण्हुनि खे सुकून मिलंदो आहे हीउ ट्रैक गॾिजी ॿुधूं था अव्हां खे कीअं थो लॻे ॿुधाइजो मैसेज में जल्दी जल्दी मैसेज कजो छो त हिन खां पोइ जेको कलाकु शुरू थींदो न्यूज़ खां पोइ उहो हूंदो कॉल्स वारो ऐं हा कॉल्स जे लाइ असीं तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदा उन ते कॉल कजो जेको नंबर न ॿुधायूं उन ते न त पोइ ट्रेक आहे ब्रेक आहे बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापसि ईंदो छो त प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी हिकिड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनुस बकारी

जनाब की भी लगी अवां के जो कि शो जरूर पेंजी राय का आगाह कजो अवां ने मैसेजेस अवां जी मोहब्बत अवां जी प्यार अवां जी पेंजाए पे आहे शामिल जो कि शो में तपोए ही आवाज बुदो इन आवाज में ट्रैक में अवां के छापे महसूस थी दर्द हजार दिनई मुखे तो बीमार कई फौजे सुमरो जो ही आवाज जो दर्द दे वरी पुछे हाल अहवाल हाने केड़ो हाल थई तो पूछा थिंदो केडा यादगार ऐं शानदार गीत फौजिया सुमरो गाया होया ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त फौजिया सुमरो सेप्टेंबर महीने जी 4 तारीख़ ते हिन खां असां खां तक़रीबन 20-22 साल अॻे जॾहिं विछड़ी वई हुई पर हुन जा गीत सदाई सिंध में गूंजंदा रहंदा सो फौजिया सुमरो जो ट्रैक ॿुधी वठो यूनिस बकारी बिना ब्रेक वापसि ईंदो ऐं असां ॻाल्हियूं कंदो रहंदो छो त थोरो टाइम बचो आहे न्यूज़ में

जी जनाब, न्यूज़ ब्रेक जो टाइम थी वयो आ। तांगे डेहे तोड़े परडेह जो खबरों बुधराइण लाए संजे सेंट्रल स्टूडियोज जी पेशकश ता वठी दालू जिता केटीएन न्यूज़ बुधराइंदासी वापस इंदासी। आई हां, पूरो कलाक टेलीफोनिक गुफ्तगु थिंदी पर अवां के नंबर बुधाइंदासी ब्रेक खां पो केडेना वंजो छो त प्रोग्राम आहे जारी हो सारी नंडड़े ब्रेक खां पो वापस इंदो अवां जो पंजो यूनुस बकारी शो आहे सिंध डीए जी।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 030029624 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली

0: सदा रहे तेरी अदा मुस्कुराने की, समेट ले तेरा दिल हर खुशी जमाने की। खुदा की कसम मोहब्बत नहीं अकीदत है, इस दयारे दिल में बड़ा एहतराम है तेरा, तेरे मासूम निगाहों की तकद्दुस की कसम, दिल ने तो किया रूह ने भी तुझसे प्यार किया है। वेलकम बैक मौजूद सामीन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क, ऐं GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज़ जी गॾियल पेशकश सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ीअ जी शाम अव्हां जे नाम ऐं अव्हां जो आरजे अव्हां जो मेज़बान यूनुस बकारी अव्हां सां आहे मुखातिब, ऐं यकीनन अव्हां सां अव्हां जूं ॻाल्हियूं कंदे कंदे जेको उहो कलाक अची वियो जंहिंमें असां शामिल कंदासीं तव्हां जूं कॉल्स, कंदासीं दिलचस्प ॻाल्हियूं, पर उन जे लाइ इहो आहे त कॉल फ़क़ति हिकु दफ़ो को बि महिरबानी करे सघे थो, ऐं कोशिशि कयो त जेकॾहिं तव्हांखे हवा में बीठल आहियो गोड़ शोर में त हिकड़ी साइड ते थी पियो, ताकी तव्हांजी जेका कॉल आहे उहा क्लियर सम्झ में अचे ऐं ॿुधंदड़नि ताईं तव्हांजो आवाज़ पहुचे। आस्ते न ॻाल्हाइजो, जॾहिं बि ॻाल्हायो थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाइजो, ताकि तव्हांजो आवाज़ सही नमूने पेश थी सघे, त पोइ नंबर नोट करे वठो। जी हा, असांजो नंबर आहे 0334-3525-786। नंबर आहे 2-344-5025-786। सफ़ा सवली सिंधीअ में 2-3-4-5-5-7-8-6 इहो नंबर आहे, नंबर ते तव्हां कॉल कयो ऐं अव्हां सां कंदासीं हाल अहिवाल। त पोइ दोस्तो, महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में पहिरीं कॉल खे ज्वाइन कयूं था ऐं ॾिसंदासीं त असां सां केरु जुड़ी चुको आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई, फर्स्ट कॉल ई अॼु मिस कॉल थी वई, मिस कॉल थी वई। बाबा, ॾिसूं था त हाणे कंहिंजी कॉल आहे, उन जे लाइ वरी बि हलूं था कॉल जे तरफ़, ॾिसूं था, अटेंड कयूं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केर साहब ऐं किथां खां? छा हाल है गुलाब गुल?
1: बिल्कुल प्रोग्राम बुधो साहब, हले थी।
0: तबियतूं कीअं? ख़ुशि आहियो? ठीक आहियो?
1: बिल्कुल ठीक लॻा पिया
0: आहियूं। हा, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: नोटो जी नगरी खां रामचंद कुमार मकवान ॿुधे, चौहान कुमार कोली ॿुधे पियो, जेके ॿुधनि मां सभिनी खे सलाम।
0: वालेकुम असलाम, थैंक्यू थैंक्यू, भली कार चवंदासीं, महिरबानी, मिठा माण्हू, ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साईं
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
2: तव्हांजो भाउ, तव्हांजो दोस्त, नोट जी नगरी खां फ़क़ीर आमिर जिन।
0: फ़क़ीर आमिर जिन जी, ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? चङा भला, अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? हा, सदको मां वञा तव्हां तां, जो केरु त आहे जेको मुंहिंजो आवाज़ रिकॉर्ड करे वरी ॿुधे थो?
2: बिल्कुलु बिल्कुलु, सभु ॿुधंदा आहियूं।
0: हा, सही आहे सही आहे। ख़बर अथव, माना तव्हां जूं मोहबतूं जेके आहिनि, उहे ई त असांखे जीअरनि थियूं। तॾहिं त शायर चयो, न जाने कौन मुझे दुआऊं में यादि रखता है, मैं जब भी डूबता हूं समंदर उछाल देता है। महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू,
2: रामचंद कुमार मकवान पाड़ो आहे
0: ऐं
2: असांजो दोस्त देवफा गुलाब गुल असांखे यादि कोन थो करे, असांखे
0: भले यादि करियो, महिरबानी, लख थोरा साईं कुर्ब तव्हांजा। ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप थी वई आहे ऐं कॉल ॾिसंदासीं कंहिंजी हूंदी। सो अव्हां खे असांजी ॻाल्हियूं यकीननि हमेशह ॿुधणियूं पवंदियूं आहिनि, पर कॾहिं कॾहिं असीं अव्हां जी ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं। नंबर आहे 0-344-3525-786। सवली सिंधीअ में 2-344-5025-786। अञा बि सवली सिंधीअ में 2-3-4-3-5-5-7-8-6। सो इन नंबर ते कयो कॉल, कंदासीं हाल अहिवाल, ॾिसंदासीं असां सां गॾु कॉल ते केरु हूंदो, केरु जुड़ंदो असां सां हाणे, छो त ट्रैक ते प्ले करे था वठूं, छो त तव्हांखे ट्रैक बि गॾु गॾु ॿुधाईंदा हलंदासीं ऐं हिन में हूंदा बैकग्राउंड ट्रैक। हिन में हिकड़ी दिल जी ॻाल्हि आहे, दर्द जी ॻाल्हि आहे. दिल जेका हूंदी आहे न, उहा जॾहिं तंग कंदी आहे त शायर लिखंदा आहिनि उन्हनि ते लफ़्ज़. सो शायर लिखी छॾियो त डॉक्टर साहिब खे लिखियईं, डॉक्टर दिल बदली करे ॾे मूंखे तंग थी करे. अहिड़ी ॻाल्हि जॾहिं मुमताज़ मौलाई ॿुधी त उन वरी हीअं चई ॾिनो, ॿुधो.

0: दिल बदली करे डे डॉक्टर मुझे तंग थी करे सो दिसूं दा फिलहाल कॉल ते केर है सदा गड बाकी गालियों कयूं था गड गड हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज अच्छे से मुझे अलहमदुल्ला केर साहब आई किथां का रुस्तम छा हाल है खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु केर पियो ॿुधे जी जी अच्छा अच्छा महिरबानी लख थोरा मिठा माण्हू लख थोरा ख़ुशि जो जी जी हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल है दिलीप कुमार शुक्र अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे हलो अच्छा आवाज़ में शायदि को मसलो आहे ॾिसूं था हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब किथां खां शहज़ाद थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाए हा शहज़ाद नंगणो पियो ॻाल्हाए शहज़ाद तलहार जे वेझो ॻाल्हाई पियो उन खां नंगणे ॻोठ मां हा अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे रेडियो ते मुंहिंजो आवाज़ घटि पियो अचे मां इंजीनियर खे चवां थो त मुंहिंजो आवाज़ वधाए इंजीनियर आवाज़ मुंहिंजो वधाए डंगणो साहिब ॿुधे पियो ठीकु आहे मां हाणे हाणे आवाज़ वधायां पियो ठीकु आहे छा करे ॿुधायां खिल ख़ुदा जे वास्ते हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू महिरबानी रंगणा साहब ऐं मौज़ूद स्वामी नज़रात दिल बदली थींदी आहे छा दिल तंग थी करे डॉक्टर साहब बदली करे ॾे कहिड़ी मोटरसाइकिल जी इंजन हुजे बदली थींदी कोन थींदी दिल बदली अदा भा ओके जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
1: लोटो जी नगरी मां रामचंद कुमार मकवाणा मुखातम दिलबर
0: जी रामचंद छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे रामचंद आरजी थी वियो आहीं जा सॼे जहान जा नाला वरिता अथई सॼे ॻोठ जा सॼे शहर जा सॼे सिंध जा तुंहिंजा दोस्त आहिनि त मुंहिंजा दुश्मन कोन्हे पाणे थी तंग न कर न त वरी दिल बदली करे ॾियारो गानो तोखे डेडिकेट करे छॾींदसि चलो चलो तुंहिंजो रेडियो सुठो आहे छा कजे तोसां मुक़ाबलो नथा करे सघूं बाबा हलो अस्सलाम वालेकुम हलो हलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी आवाज़ कोन आयो शायदि कॉल ते ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल्स इशू पियो अचे ॾिसूं था कंहिंजो आवाज़ आहे साईं मुंहिंजा आवाज़ हूंदो वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां खीर थर जबल खां छा हाल आहे साईं नालो पंहिंजो ॿुधायो जमशेद चांडियो साहब के चवंदासीं भलीकार खुश हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो वेलकम था चऊं साईं अवां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे महिरबानी सॼी संगत खे सलाम ਗੁਰਬ ਸਾਈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਜੋ, ਆਬਾਦ ਹੋਜੋ, ਖਿਲੰਦਾ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਇੰਦਾ ਰਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗਾਨੂ ਅਜੀ ਚੁੱਕੋ ਆਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। हिकड़े पासे गानू हलियो पे दिल बदली करे डे डॉक्टर है, वरी बे पासे गानू अची वयो है ते इतबार करी तो सवाय सर ही नथी। हाय हाय, जबरदस्त ट्रैक। किसन दासी कॉल ते केरा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, केर साहब है किथा का?
2: कुंदरी का चोवन कुमार कोलियत जो करे सर।
0: छा हाल है चोवन साईं, खुश आयो, ठीक आयो?
2: रला अकरम दो लगियो को हो ना, बस बैठायो इनी आसे ते बरसात वाले बरसात भी थे थर जा जे के हालन
0: हेर
2: दुकार दे जे हालन पूछो।
0: अल्लाह साईं रहम फरमाईदो, अल्लाह साईं रहम फरमाईदो, दुआगु आयो इंशाल्लाह तवा जले बरसात हो इंदियो, बाहर हो इंदियो, बरकत हो इंदियो। अवा सा करे केर पे बुधे?
3: हाँ, यूनस बाज़ार मोहम्मद बच्चन से बात में गलाया नारो साले पट खा सर कुछ टाइम का गहरा जर रहे हो जहाँ प्रोग्राम अच्छा ना बुझे
0: साईं प्रोग्राम सूमर है अंगारो थी यूनस जो वारो सूमर है अंगारो।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम साईं, मोस्ट वेलकम,
0: वेलकम वेलकम तहां के भलीकार। ता साले पट का बुदो पिया, साले पट जेको सखर जिले में आए उन जो तालको साले पट उतां का ता ज्वाइन कयो आए, अवां के अखियन साण सलाम कयो था। सदको अलाह साईं उनखे जन्नत नसीब करे, असांजो मिठो महबूब दोस्त हुयो ऐं उनखे तव्हां यादि कयो आहे। अलाह पाक खां दुआ घुरायूं त रब पाक जे रहमतुनि में हुजे। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? इनशाला इनशाला, बसि रब पाक जे रहमतुनि में हुजे, हुन जे लाइ दुआऊं आहिनि। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? तावन कन त वाजो कम थी वञे। साईं खुश हुजो, खुश हुजो, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी छा हाल आहे, खुश आहियो साईं? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, केर साहब पियो ॻाल्हाए असां सां? छा हाल आहे, खुश आहियो साईं? अॼु साले पट जूं कालूं लॻनि पयूं, वाह वाह। साईं जी बिल्कुलु, जी एफ एम सॼी ख़ुशि आहे, जी एफ एम जा सभु माण्हू ख़ुशि आहिनि, सभु जेके असां जी एफ एम फैमिली वारा आहियूं उन्हनि जे तमामु टीम बि ख़ुशि आहे, लिसनर्स बि असांजा ख़ुशि आहिनि। अच्छा, बसि असांजो फ़क़ीराणो अंदाज़ आहे, अलाह करे त क़बूल पवे। कोशिश कंदासीं, कोशिश कंदासीं, हाज़िर साईं, हाज़िर हाज़िर।
4: ॾाॾाणो

0: वाह वाह
1: उमर अदा मुझा पाड़े भलो साईं सिके तो मुझे जो इसा
0: साईं है तर रिंद साहब जरे गाएं दो तो वरी विच में वरी यू तूतली यू आवाज ही दो उन जोको वो आवाज डाड़ो दो पर तुलुलुलु तुलुलु वो डाड़ो सुठे लगें दो यो सो मजिस खातिन नजर देखड़ी वदी कॉल अटेंड के हुंदा ट्रैक वाले पे रिसनासी केर हुंदो असा कर कॉल ते सो जनाब कॉल पेरी अटेंड करनी कोशिश के हुं था अजीब इत्तफाक है ता कॉल अटेंड थी वई है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं केर साहब आई किथा का
2: साले पट खाई इरफान अली थेबो
0: इरफान अली थेबो साले पट खबड़ी भेट खा वेलकम था चौ साईं
2: थैंक यू सो मच यूनिस तमाम जो साजा पर जो काली वचन छु अलहमदुल्ला मुजी भी साजा पर वाले दोस्त का पो वरी भी साजा पर
0: वाले आज बैक टू बैक साले पट जो कालू लगन पे वाह वाह वाह वाह माने आज सखर असन जी के नशरियात है ना वो डाडी पावरफुल ता हले पे असन जी नेटवर्क के जी
2: बिल्कुल
0: ना ये मोहब्बत मोहब्बत में माना लिखो थोड़ी कबो
2: कुदरती
0: नसीब असो नसीब है ना किथे खबड़ी भिट है कालू मिलन पे महसूस थे जन हाने हाने सखर जे खूबसूरत उन असाजे सिंधु दरिया के किनारे से वेही तवाजू कालू भी अटेंड कया
2: बिल्कुल यूनिस पूरी सिंध तवा के बुधे थी ए सिंध का बाहर भी तवा जो आवाज माशाल्लाह विंदो हुंदो रेडियो जे जरिए
0: यकीनन यकीनन
2: जरिए तवाने तो
0: बिल्कुल
2: रेडियो जे जरिए भी असन जे लाडकाणो आहे ए सक्कर आहे ये पंजाब ए बलूचिस्तान के लम्मा बलम्मा नचा जरूर पुजे
0: बिल्कुल बिल्कुल पचाइन था बिल्कुल उता कॉल्स अचन थियो बिल्कुल अचन थियो
2: बिल्कुल इन वजह से तवाज सिंध का बाहर भी तवाज आवाज वे तो सिंध का बाहर भी बुध वे तो
0: जिते जिते
2: जीएफएम 88 अन्या भी तरक्की कर अन्या भी स्टेशनियो
0: इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच अवसर कर भी केयर पे बुधे
2: सलाम सिस्टर मिसेस अली ए सिस्टर फौजिया फातिमा सिस्टर दुआ खान रायत उम्र मुमताज उम्र हुसैन बख्शी हाफिज गुलाम अहमद सांबल ए लुकमान चाचर
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू मिठा मानू थैंक यू दिसनासी हाने काल ते केरा हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: जी वालेकुम सलाम साईं
0: साईं केर साहब हैं किथा का
3: जी सलाम मोहम्मद आचर खास के लिए गलांगो से बहादुर खास के लिए ताल का जोड़ी का
0: क्या हाल है मोहम्मद आचर खास के लिए साहब खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला ढी खुशी थी अज अस आवाज बुध में अची वो पुछा करूं मुझे ख्याल में मोरे से हलन हों पर अस रिक्वेस्ट कस मोरो की टीम के प्लीज प्लीज मुझे आवाज बुधरा मुझे दोस्त बुधन ठीक है साईं
3: काफी
0: टाइम थी ये टेक्निकल फॉल्ट हों मोरे वारा तो जबरदस्त नशरियात असाजी नेटवर्क है उनमें कोई इशू ना है इशू हों न इंटरनेट में इंटरनेट महबूब का बेवफा अव नखरो हों नेट जो नखरो पूरी दुनिया में वेचारा मानू मायूस थन्दा सो को मसलो को इंशाल्लाह मोरे की टीम के रिक्वेस्ट कंदी कनेक्ट कन तो जी असा दोस्त बुधी सकन थैंक यू अवसर कर भी केर पे बुधे वालेकुम असलम मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा सही ओके जना भी कॉल अटेंड कर ब्रेक वा दिसा कॉल थे हेलो असल लाशारी साहब खुश आयो जी अवसा कद भी केर पे बुधे ठीक है ठीक है ठीक है हथ जो रुमाल इंशाल्लाह बुधाई हथ जो रुमाल जो जमानू आखिरी कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी केर साहब है किथा का
4: आज जिले बच्चा अनवाणी फिराम शाहपुर तरफपुर
0: शाह हाल अनवाणी साहब खुश आयो ठीक आयो
4: अलहमदुल्ला तमाम भाईरन जी दुआ मन सदड़ी मवा मन
0: आज साई मो टाइम तमाम घट है पुछंदस तमा सा करबी केर पे बुधे सलाम वालेकुम असलम अखियन से सलाम रखी मोकलियो पे अगते इंशाल्लाह पहुंचा हवाओं के आधार मोहब्बत मिठा मानू اوکے مزید خواتین حضرات ایک شارٹ بریک ہے ان آواز کے بدلنے بدلنے کمرشل بریک نہ بدھوں تھا باقی اد کلاک کے ساتھ ہوں مجھے خیال میں اد کلاک میں کنجو کالوں اندی وہ بریک کا پوئے کال کجو وچ میں بالکل کال نہ کجو ماں تیس تھی تھوڑی دیر ساہی پٹے وٹا پانی کی لپ پی وٹندس تھوڑا ساہ کھڑس پھکارو کھڑس پھکارو جن کے چوندا پھکارو کھڑی واپس اچان تو تیس تھی یہ گانوں بدھی کمرشل بریک تھا وٹوں

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: वेलकम बैक मुंहिंजे सामाइन GFM 88 रेडियो नेटवर्क असां मुखातिब आहे शो आहे सिंधड़ीअ जी शाम ऐं शो आहे अव्हां जे नाम अव्हां ॿुधो पिया GFM 88 मीरपुर ख़ास GFM सखर GFM लाड़काणू GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंड GFM मटियारी ऐं GFM मातली जे गॾियल पेशकश आरजे वञे पंहिंजो यूनुस बकारी ऐं मोहबतुनि जो सिलसिलो जारी ओसारी जी जनाब त पोइ साधे आवाज़े साथ में असां सां गॾु केरु हूंदो हुन जे लाइ नंबर ॿुधाए था वठूं 03435257860 2334-3525-7586 ते कॉल करियो कॉल में हूंदो असां सां गॾु केरु ॾिसी था वठूं। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम केरु साहब ऐं किथां खां हलो आवाज़ अचे पियो आवाज़ हलियो वियो आहे ॾिसंदासीं ॿी कॉल ते हलंदासीं। हलो अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम
5: जी केरु साहब ऐं किथां खां कपरी मोरी खां चांग साहब नालो त ॿुधायो मोहम्मद यूसुफ चांग साहब वेलकम चऊं था कपरी मोरी खां ज्वाइन कयो मोहम्मद यूसुफ महिरबानी तव्हांजो लख थोरा जी जी जी महिरबानी ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम कॉल हली वई ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम केर साहब ऐं किथां खां
6: यूनुस साईं आरजे नाज फकीर मोहम्मद जलालाणी रेडियो नेटवर्क झोल ज़िलो सोनगढ़
5: छा हाल साईं खुश आहियो
6: साईं अलाह जा एहसान गाऊं तव्हां खुश आहियो ठीकु ठाक
5: अलहमदुल्ला अव्हां जी दुआ लॻी पई आहे तव्हांजी तबियतूं कीअं आहिनि खुश आहियो ठीकु आहियो
6: फस्ट क्लास अलाह साईं जा एहसान आहिनि तव्हां भाइरनि जे दुआ सां बिल्कुलु ठीकु ठाक ख़ुशि पाइन आहियूं
5: हा अलाह करे आबाद हुजो शाद हुजो तारनि में चंड हुजो खीर में खंडु हुजो मेवनि में अंब हुजो
6: माशाल्लाह ज़बरदस्त तव्हां उस्ताद आहियो ऐं तव्हां जेको रेडियो पाकिस्तान ते रहिया आहियो ज़ाहिर वधीक कंहिं ॻाल्हि करण जी ज़रूरत ई कोन वधीक
5: मोहबतूं तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
6: मूंसां गॾु सॼी सिंध आहे ॿुधे पई बरहाल कुझु साथियुनि खे यादि कंदासीं जेके हिन वक़्तु समाज फरमाइनि पिया रुस्तम अली पावर रोशन अली पावर कुर्बान अली ख़ासकेली अब्दुल रहीम गुलाम रहीम बलोच चोवन कुमार कोहली
5: वालेकुम असलाम। थैंक यू मिठा माण्हू, थैंक यू लखत हो राजस्थानी। हाणे कॉल ते केरु? हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम
5: जी, केरु पिया ॻाल्हाइनि? जी जी बाबर चांडिया साहब, भली कार चवंदासीं तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी महिरबानी महिरबानी बाबर, थैंक यू। लख थोर असांजे खीर थर जबल खां बाबर चांडियो साहब जी कॉल हुई। कॉल ते हाणे केरु हूंदो ॾिसंदासीं। हलो अस्सलाम वालेकुम।
8: जी वालेकुम अस्सलाम
5: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
8: जी मिठा माण्हू घोट हाजी सुल्तान लुंड खां, प्यार अली लुंड।
5: छा हाल आहे लुंड साहब, ख़ुशि आहियो?
8: अलहमदुल्ला ख़ैरियत सां आहियो। सर मां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो त बि सही आहे?
5: अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
8: सलाम ॾियणु चाहींदासीं दिलीप कुमार मेघवाल, रामचंद कुमार मकवाणो ऐं रुस्तम अली तंवर
5: खे। किरोड़े कुर्ब तव्हांजा मोहबतूं मिठा माण्हू, मोहबतूं ॾिसंदासीं कॉल ते। हलो अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम
5: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
9: साईं रांझन कोरी, कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां।
5: कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां रांझन कोरीअ खे भली कार था चऊं।
9: जी जी साईं, तव्हांजी तबियत कीअं?
5: तबियत बिल्कुलु ठीकु आहे, तव्हांजे दुआउनि सां बिल्कुलु ठीकु आहे, शुक्र अलहमदुल्ला।
9: माशाला माशाला।
5: अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे मिठा माण्हू?
9: असां सां गॾु असांजो दोस्त ॿुधे पियो न्याज जूणे जो, ॿियो डॉक्टर खरान, डॉक्टर लालचंद ऐं ॿिया पंज, ॿियो अली जूणे जो, नज़र जूणे जो, अजूबाय जूणे जो, गुला नबी जूणे जो, इलियास जूणे जो, माजिद जूणे जो,
5: मोहबतूं मोहबतूं जूणे जो, ख़ुशि हुजो साईं।
9: साईं न्याज जूणे सां थो ॻाल्हाइजो।
5: जी जी जी, वालेकुम असलाम मिठा माण्हू, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
10: हा
5: बसि अवां जे अवां जी दुआउनि सां वरी ठीक थी वियासीं। बसि अवां जूं मोहबतूं आहिनि, ऐं थोराए थो आहियां तव्हांजो, तव्हां असांजे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे ॿुधो था। मां सदिको वञा, जेकॾहिं तव्हां ईअं पिया समुझो त अलाह साईं मूंखे ओसी ताईं ज़िंदा रखे, जेसि ताईं मां पंहिंजे धरतीअ जे, पंहिंजे सुहारी सिंध जे माण्हुनि जे लाइ ज़रियो बणिजां खिल ऐं ख़ुशी। किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु? हलो अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम अस्सलाम
5: जी, जी ख़ैर आहे? केरु साहब ऐं किथां खां?
11: बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, तुंहिंजे पासे खां ई मोहम्मद सलीम अहमदाणी, लग साबत दस्ती ॻोठ गाज़ी खान अहमदाणी।
5: अच्छा, ख़ुशि आहियो अहमदाणी साहब, ख़ुशि आहियो, चङा भला।
11: सभु ख़ैर दुआऊं आहिनि, अमन तव्हां ॿुधायो?
5: अलहमदुल्ला। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
11: मूं सां गॾु मुंहिंजो कज़न आहे मुनवर अली अहमदाणी।
5: जी जी।
11: अली गुलाम अहमदाणी।
5: जी जी।
11: मोहम्मद सिद्दीक अहमदाणी ऐं उमर फारूक अहमदाणी।
5: अखियुनि ते मिठा माण्हू, लख थोरा तव्हांजा।
11: अच्छा, इहो हिकिड़ो अर्ज़।
5: जी जी।
11: इहो मेहराबपुर स्टेशन मैनेजर साईं अहमद शाह लकियारी खे मुंहिंजा सलाम चइजो।
5: वालेकुम असलाम साईं जन, बिल्कुलु ॿुधंदा हूंदा, छाकाणि हिन महिल ड्यूटी जो टाइम आहे त बिल्कुलु साईं जन स्टूडियो में मौजूदु हूंदा, जेकॾहिं ॿुधनि पिया त तव्हांजा वालेकुम असलाम ज़रूरु चवंदा। थैंक यू मिठा माण्हू, थैंक यू। जी जनाब, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु? हलो अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम असलाम मिठा माण्हू, ख़ुशि आहियो प्यारा माण्हू?
5: अलहमदुल्ला। केरु साहब ऐं किथां खां?
12: सर चूअर जमाली, जावल दलगा शाह यकी, नाज नंगर खान जमाली।
5: अखियुनि ते नाज नंगर खान जमाली साहब, भली कार चवंदासीं तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
12: साईं मुंहिंजा ॿुधो पिया, मुंहिंजो दोस्त आहे दिलीप कुमार मेघवाल, बाबू वेसल खां रोस्तम अली पवर, सिकंदर अली शबानी ऐं मोहम्मद सदीक पारो, चूअर जमाली, मोहम्मद हाशिम जमाली, मोहम्मद मेहराब जमाली, गुलाम कादर जमाली, मेहताब अहमद जमाली, नज़ीर अहमद जमाली, बशीर अहमद जमाली, नूर अहमद जमाली, मोहम्मद रमज़ान जमाली, अब्दुल रफ़ीक़ ख़ान जमाली, सलाला ख़ान जमाली, अब्दुल क़दीर ख़ान जमाली, मोहम्मद जुमल जमाली।
5: अबा नाज़ नंगर ख़ान, थोरो ब्रेक ते पेर ॾे, साह त खण
12: बाबा।
5: अच्छा ठीकु आहे, मोहबतुनि में साह त कोन विञाइबो न, मोहबतुनि में साह बचाइबो, वेसाह बि कोन विञाइबो, वेसाह
12: बचाइबो।
5: ओके जनाब कॉल ते केर है पर गानू केड़ो है बुधो तुझे हथ जो रुमाल किते रहजी वयो कॉल ते केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी छाल अदनान चांडियो साहब वेलकम था चूं तां के तां सगर बे केर पे बुधे जी जी मेहरबानी मिठा मानू लखत हो रहा तां जा ओके जनाब काल ते सा जी केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
10: वालेकुम अस्सलाम
5: जी केर साहब असा के बुधे पियो कलोड़ा साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला अल्लाह पाक जा करम आइन किरोड़े करम आइन तां सा कड़ बे केर पे बुधे
10: मुझे भाव मामा दामी कलोड़ो निसार करो जिके बे बाहर बेनियो बुधंदो इरफान थेबे के सलाम
5: इरफान थेबे साहब समेत सबनी के सलाम पहुंची है मेहरबानी मिठा मानू कुर्बता दिसना सी कॉल ते केर है हेलो वालेकुम सलाम जुल्फकार भा मुझे ख्याल में तानी कॉल अटेंड कर चुको है न
13: सर कॉल कट जी भाई सवेर लगी
5: आई भले कट जी वने पर रिपीट कॉल अलाउ कोन होंदी आ मुखे मुखे जको आ न मुखे मार मिलंदी खबर थी ब दफा कॉल खणन थे ठयो ठीक आ अवा सके बे केर पे बुधे हेलो कॉल वरी ड्रॉप थी वही है आवाज कौन पे कॉल ड्रॉप ना थी कॉल मूसा कनेक्ट है पर आवाज कौन पे जिसनासी कॉल तैयार केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम छा थी वियो आहे वरी बी कॉल अटेंड थी भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब आवाज कौन पे अच्छी हेलो चलो जी जिस तीन नई कॉल अचे तेस तीन थोड़ी देर ला वहां के गानों बुधरा ओके जी इन गाने के थोड़ो रिवर्स करना सी थोड़ो बुधरा हूं ताके ते अनवर विस्तरोड़ो साहब है वो के खिलाने जे चक्कर में है पर खिलन जी गाल ना पई थी पर बुधो

ना चलो जी अनवर मिश्रा साहब तो चवी तो खिलूं था खिलो भला अचो गजी खिलूं भला हाँ एक दफो वरी चो तो खिलूं।

లేదు అకస్మ మిలే అకేలీ ప్యార్ ओके जनाब हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक आहे बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापसि ईंदो ऐं जो कॉलूं अटेंड कंदो नंबर आहे 0334352578 6 2 3 4 ॿुड़ी 334 2 5 25 786 ते केरु हूंदो नंढड़ो ब्रेक आहे

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-8879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज,
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अच्छा जी, आवाज़ अजीब गाल है, आवाज़ जो है वो कौन पे अच्छे इन करे प्लीज जैसे कॉल किया कें अड़ी जाए कॉल किया जो आवाज़ ऑन एयर थी सके कदें कदें ये आवाज़ जो है वो अवजो ऑन एयर थियण में थोड़ा प्रॉब्लम कह हाँ दिसासी तो कॉल से केर है। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, केर साहब है किथा का? जी छा चांडो साहब, खुश आयो? ठीक आयो
1: खैर अमन लगी पे दुआओं ता खुश आयो ता टू टीम खुश आए
0: अल्हम्दुलिल्लाह। ता सा करबे केर पे बुदे
1: सर मुला कुछ मेरा बाहर दिन संगत आ रहे ने
0: नाला जल्दी वटो टाइम घटा
1: सर सऊदी अरब मा रिजवान चांडो लुकमान चांडो साजिद चांडो वाजिद बाबा रदनान चांडो
0: मेहरबानी मिठन मानू जो असके भले पार का बुदन था। जी केर साहब है किथा का? अच्छा जी, अद आवाज अच्छे पे नालो पेंजो खणो, जल्दी नालो खणो, टाइम घटा। जी चांडिया साहब मेहरबानी, लख थोरा ताजो आवाज क्लियर कोन थो अचे। हाँ हवा है, अलग करे हवा उनमें हो जो खुश हो जो आबाद हो जो मिठा मानो कुर्ब दिसंदासी हानी कॉल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, केर साहब है किथा का?
2: जोस दा गोड जुड़ दी थर का गुलाम रहीम बलोच वाला।
0: क्या हाल है गुलाम रहीम बलोच साहब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं सर आप दा खुश हो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। केर साहब है किथा का?
2: दुआ बिदो प्यार जबरदस्त चले।
0: अच्छा आवा सके भी केर पे बुदे सभी के सलाम मिली वे। वालेकुम अस्सलाम कुर्ब मिठा मानू कुर्ब ताजा खुश जो रिश्तासी हाणी कॉल ते केरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, केर साहब है किथा का? जी जी अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब हुकुम कयो साईं, अर्ज़ न हुकुम। उस्ताद जलाल जलाल शो जी शुरू में प्ले करे छरियो सी वरी सुभाणी वारे शो में हाजिर।
2: ठीक है साईं, मेहरबानी।
0: कुर्ब साईं कुर्ब कुर्ब दिसासी हाणी कॉल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, केर पिया गलाइन? हेलो हेलो। अच्छा जी आवाज कोन पे, कॉल ते दिसासी हाणी केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बल्कि कॉल ड्रॉप थी वही है शायद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कॉल ड्रॉप थी वही है, एडो सजण मुख छो थो वणी, दीपा कमल जो आवाज। ये है जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क मां शो बुधो पिया सिंधड़ीए जी शाम है। अने मेज़बान आहे यूनिस बकारी, अवां सां ॻाल्हियूं आहिनि जारी उसारी। आख़िरी असां वटि पंज मिंट बचिया आहिनि, कॉल करणु चाहियो था जल्दी सां कॉल करियो 0334-352-5786 असांजो नंबर। इन नंबर ते असां ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
4: हलो अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? जी छा हाल है वाजिद चांडू साहब, तां सा गड बे केर पे बुदे?
4: जी उ तो मुजा गड सच्ची जा बुदन जी, उबेदला चांडू बाबर चांडू यदन चांडू दुलका चांडू।
0: मेहरबानी मिठा मानो, मेहरबानी लख थोरा।
4: थैंक यू
0: कुर्ब कुर्ब खुश जो दिसनासी ते कॉल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम
0: जी, केर पे गलायो?
5: ठीक कर जब लगा संगीत चांडू लगन
0: आ। छा हाल है साईं, खुश आयो? ठीक आयो चंगा भला। मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी दुआ आहे। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? महिरबानी मिठा माण्हू, कुर्ब तव्हांजा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम साईं, कहिड़ा हाल आहिनि?

0: जी जनाब, उन खागे जो वक्त रे वहकरे जो अलार्म वजे यूनुस बकारी हलियो वने आखरी कॉल्स अटेंड पे कयो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी तमा केर पे गलायो?
1: ना गोट शाह दवानी का पोरो नाले पे गलाया।
0: जी छाला मजा करबे केर पे उदे जल्दी नालो उठी उठो।
1: ए सलाल नवानी है, ममता नवानी है, हफीज नवानी
0: कुर्बतान जा मीठा मानो कुर्बतान जा रिसनासी हाणी कॉल ते के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, कॉल ड्रॉप थी वही है, दिसंदा सी त कॉल ड्रॉप थन का पोए हाने मुझे ख्याल में वक्त बिल्कुल करे। वालेकुम अस्सलाम, केर साहब पे गलन?
2: अदामा मालिक मोहम्मद बलोच गलाया पे मिट्टी थरपार कर का।
0: अमा सकत बलोच साहब, केर जल्दी नालो उठी बैठो, मोर टाइम सफा को नहीं।
2: भाई दिलीप कुमार रामचंद मकवानो रोज संपावर मोहम्मद सिद्दीकी।
0: मेहरबानी मेहरबानी, लखत वाला लखत। ओके जनाब, इन्हीं ते अजो के प्रोग्राम में सोना सोना रंग वंज नाउ कंदे असि अवा के मोकलायो पे सुभाणी शाम जो 5 वगे का 7 वगे ताई वरे टाइम ताई साहा जो सगड़ो सलामत रहयो, किस्मत साथ दिनो तो वरी अवा जे हाजरी में हुंदा। तेसी ताई उनका आगे जो मोकलायण जो को वाह वरे आई अवा वट वरी अचू, तेस ताई पेंजे दुआउन में याद रख जो, जदे दुआउन जे ला हथ खणो तो असा के कदे में विसार जो। चंगु यारो यारी मोकलाए तो यूनुस बकारी न दुआ सा, तो जिते अवां जो पेर हुजे उते खुशन जा ढेर ऐं खैरी खैर हुजे। उस्तादन वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं खुशियुनि वारियूं हवाऊं अवां जो मुक़दर बणजनि। साथ सलामत सिक सलामत असां जो अवां जो पाण सभिनी जो, अल्लाह निगेबान।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं कदम।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03132525786।
5: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-8879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125257-86।
4: जी हा 2315-2576।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0336638789 and 0312-1401-287. खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786।
5: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

वो मेरा ख्याल थोड़ा सा ओवरब्लो जा रही है, ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। नेशनल इशू है, इसमें कहीं से भी रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए।

0: सारी दुनिया में चीजें होती हैं जो फर्ज करें किसी सूबे में एक किसी सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं रहे। मेरा ख्याल है ये वफाक की भी नफी नहीं करता, वफाक को भी मजबूत बनाएगा।
1: मनसूबन या इंतजामी यूनिट्स जो क्याम कौमी मसलो है इन मामले के किथा में मजाहमत न थियण घुर्जे। यह फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कंदो। बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ अकबर बीर नव सूबन की हिमायत कंदे चयो आहे त जेकॾहिं कंहिं सूबे जो लफ्ज़ पसंद न आहे त इंतजामी यूनिट सॾियो वञे। सूबे जे मामले ते सियासी बयान वधाए पेश कया पिया वञनि। इस्लामाबाद खे सूबो ठाहियो पियो वञे त सुठो थींदो। अफ़गाननि बे कमज़ोर हालतुनि बावजूद पंहिंजे मुल्क में 35 सूबा ठाहे छॾिया आहिनि।
2: दो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है। अनफॉर्चुनेटली वो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं जो धांधली की पैदावार है, वो बैठ के तनकीदें कर रहे हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं, वो 18वीं तमीम पे बात कर रहे हैं। आप लोग पहले अवाम में जाओ, अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आके आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे। जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
3: शहीन साहब मुझे मोशन पुट करने दे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
1: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वज़ीर अरिड़हीं तरमीम ऐं सूबन ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फार्म 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसिला न कंदा। पहिरीं हीअ अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसिला फार्म 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाईंदा ई कंदा। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जी रिना मेमन चयो आहे त वफाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरी मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: केश किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जू पकियू छिटू लगरा लाए खुश खबरी। चाहियो था अवां जे घरन जू छिटू पकियू हुजन त केश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
2: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
2: जी हाँ 2315-2575-786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करणी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करणी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई लबन ते मुर्का विखरियल दिलन में आबे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करणी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करणी आ।

कराची ऐं कश्मीर किंजर खां कानूंझर ताईं सुहिणी सिंध वासियुनि खे आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम क़बूल पवे। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं आवां ॿुधी रहिया आहियो GAFM नेटवर्क।

GFM नेटवर्क दिल जी गाल जो बुधंदड़ तमाम सबनी प्री प्यारन दिल रुबा दिल भर दोस्तन के प्रोग्राम में वेलकम भलीकार खुशामदी।

रूह बिया रंजीदा दिल बि ॾाढी बाड़ी आ हाय मन जी मुमल जी अॼु उदास माड़ी आ।

सब ठही व्या कतबा कीअं सुञाणजन कबरूं वक्त बेवड़ो आहे ऐं ज़मान भाड़ी आ अधु ग्रह जे एवज में हुई सॼी बनी गिरवी अधु ग्रह जे एवज में हुई सॼी बनी गिरवी पेट खे पटियूं ॾेई बुख मूं चब बाड़िया।

रागी टोपो जबल झांगे मुझे रूह जो रागी टोपो जबल झागे धुन ब्याहे कोहारी राग भे पहाड़िया मुझे रूह जो रागी टोपो जबल झागे धुन ब्याहे कोहारी राग भे पहाड़िया हर जुबान अटके थी कुछ न थो बुधे कोई हर जुबान अटके थी कुछ न थो बुधे कोई जो चपनते चुप पाहे छो कनंते ताड़िया मक्तलन जी राहन जा मुरकंदड़ सभी रमता मक्तलन जी राहन जा

आऊं पंहिंजे लहजे में अजनबी किथे आहियां, आऊं पंहिंजे लहजे में अजनबी किथे आहियां, इश्क मुंहिंजो उतरादी दर्द मुंहिंजो लाड़ी आ, रूह बि अजा रंजीदा दिल बि ॾाढी बाड़ी आ, हाय मन जी मोमल जी अज उदास माड़ी आ।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सिंध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786।
3: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।